मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 जुलाई सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 5:56 और 46 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्ड फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक

0: जमीन जिनकी सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है करेला की खेती। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम करेला की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सफल खेती के लिए जरूरी है सही भूमि का चुनाव। आमतौर पर इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करते समय यह देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर नमी की कमी है तो पलेवा दे करके यह कार्य करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर बाद की 3-4 जुताइयां देसी हल से करनी चाहिए। तत्पश्चात पिछली फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकाल कर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। खेत की तैयारी के समय लगभग 250 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति बीघा की दर से आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया की 1/3 मात्रा तथा डाइअमोनियम फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। बची हुई यूरिया की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसे 2 बार में, पहली मात्रा जब करेला में 3-4 पत्तियां आ जाएं तब तथा दूसरी मात्रा जब उसमें फूल निकल रहे हों तो देना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए 3 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 1 तो उन्नतशील किस्म, 2 बीज की सही मात्रा और 3 बुआई का सही तरीका। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर 12 मासी, अर्का हरित और फैजाबादी करेला इसकी उन्नतशील किस्में हैं। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके आप अच्छी प्रजातियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 बीघा खेत में करेला की बुआई कर रहे हैं तो 1 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तैयार खेत में 2 मीटर की दूरी पर 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। अब नाली के दोनों तरफ जो मेड़ बनती है उस मेड़ की ढाल पर बीज बोते हैं। लाइनों में बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि 1 स्थान पर 2-3 बीज डाले जाएं। अब बात आती है इस फसल की देखभाल की, और देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सिंचाई का। चूंकि यह गर्मी की फसल है अतः खेत में नमी जल्दी उड़ जाए।

0: जाती है। इसके लिए प्रत्येक 6-7 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निकाई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार निकाल देते हैं। इससे खेत में नमी संरक्षित रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। करेला की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है, इसको समय रहते नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि करेला की खेती करते हैं तो प्रति बीघा लगभग 40 कुंटल, कहने का मतलब ये कि लगभग 150 से 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे मिल जाती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेला की खेती करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था करेला की खेती। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखिए। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं।

जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी नितिन मुकेश, ओम व्यास, चित्रा सिंह और सुमना राय की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आज का विषय है महान संत। वाचक स्वर वीणा कालिया का।
1: महाराष्ट्र में जिन संतों का सबसे अधिक प्रभाव है, उनमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम के नाम प्रसिद्ध हैं। संत ज्ञानेश्वर ने सन 1260 में श्रीमद् भगवद्गीता की ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, जो महाराष्ट्र के घर घर में आदर पाती है। उस काल में भक्ति मार्ग के महानुभाव संप्रदाय के जो अनेक संत हुए, उनमें कुछ महिलाएं भी थीं। उनमें संत महिला महादाइसा या महादम्बा का नाम सर्वोपरि है। महादाइसा के बाद मुक्ताबाई का नाम आता है। मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन थीं। मुक्ताबाई अनेक भाइयों, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव तथा उनके माता पिता का जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण रहा। मुक्ताबाई और उनके परिवार की व्यथा कथा महाराष्ट्र के उस काल के कट्टर रूढ़िवादी समाज की हृदयहीनता की कहानी है। महाराष्ट्र के पैठण नाम के प्रसिद्ध नगर के पास आपे गांव में विठल पंत नाम के एक सदगृहस्थ रहते थे। विठल की रुचि बचपन से ही सादगी और भक्ति भाव की ओर थी। संसार की ओर उनका झुकाव बिल्कुल न था। इनका विवाह आलंदी के सिद्ध पंत की पुत्री रुक्मिणी से हुआ। विवाह के बाद भी विठल का मन संसार की ओर न झुका।

0: रुक्मिणी का बराबर यह प्रयास रहता था कि विट्ठल पंत का मन संसार की ओर लगाया जा सके। इसी सिलसिले में कभी कभी पति पत्नी में नोक झोंक भी हो जाती। विट्ठल पंत कहते, देख रुक्मा, अगर तुम मुझे इसी तरह तंग करती रही तो मैं घर बार छोड़कर कहीं। बात सुनते सुनते रुक्मिणी ऊब गई और एक दिन खींच कर बोली, हाँ हाँ चले जाओ, रोज रोज की यह बकझक तो खत्म होगी। शांत भाव से विट्ठल पंत बोले, सचमुच चला जाऊं? सच्चे मन से कह रही हो? उसी खींच में रुक्मिणी बोली, हाँ हाँ चले जाओ। और अगले दिन विट्ठल का कहीं पता न था। रातों रात गांव से चलकर वे सीधे वाराणसी आ पहुंचे, स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए तथा उनसे संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास की दीक्षा लेने के महान लोभ में उन्होंने एक झूठ भी बोला। उन्होंने अपने गुरु को बताया कि वे विवाहित नहीं हैं और न ही उनका कोई आश्रित है। कुछ समय बाद महाराष्ट्र के कुछ तीर्थयात्रियों ने सिद्ध पंत को बताया कि उनके दामाद सन्यासी होकर वाराणसी में स्वामी रामानंद के पास विराज रहे हैं। रुक्मिणी स्वामी रामानंद के पास पहुंची और अपनी व्यथा कथा सुनाकर उनसे अपना सुहाग सुख आशीर्वाद स्वरूप चाहा। झूठ बोलने के लिए उन्होंने विट्ठल को फटकारा और उदार चित्त से उसे फिर से गृहस्थ में दीक्षित कर दिया। इसके बाद की कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। गांव लौटते ही उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। रुक्मिणी को बड़ा धक्का पहुंचा। उन्होंने पति का साथ दिया। वे दोनों अत्यंत दयनीय दशा में जीवन बिताने लगे। कालक्रम से उन्हें संतान प्राप्त हुई, निवृत्ति, ज्ञान, मुक्ति और सोपान। लेकिन विट्ठल रुक्मिणी की संतानों को कट्टरपंथियों ने स्वीकार नहीं किया और इस महापाप के प्रायश्चित के लिए डूब मरने की सलाह दी। फलतः उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ा और उस व्यवस्था के अनुसार जल समाधि ग्रहण कर प्रायश्चित किया उस पाप का जो वास्तव में उन्होंने किया ही नहीं था। तीनों भाइयों और बहन मुक्ताबाई ने निष्ठुर कट्टरपंथियों के अत्याचार सहे, किंतु बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। निवृत्ति नाथ ने नाथ पंथ के गुरु गोहिन नाथ से रहस्यवाद की दीक्षा ली। अन्य भाई बहन भी उनके अनुयायी हुए। 21 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने आळंदी में जीवित समाधि ली। मुक्ताबाई ने अनेक भक्ति पदों की रचना की और सन 1296 में बेरूत के पास माणगांव में निर्वाण प्राप्त किया। मुक्ताबाई का काव्य प्रमाणित करता है कि उन्हें वेदांत दर्शन का भी अच्छा ज्ञान था। मुक्ताबाई का कहना था, वही सच्चा संत है जो दया और क्षमा का भंडार है, जिसके हृदय में लिप्सा और अहंकार लेश मात्र नहीं है। जिनका हृदय पवित्र है, परमेश्वर उनसे दूर नहीं है। परमेश्वर किसी हाट बाजार में धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उसे पाने का अधिकार तो सच्चे और सदाचारी व्यक्ति को ही है। वह किसी शिक्षा या उपदेश से नहीं मिलता। मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा से ही उसकी अनुभूति कर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था महान संत। वाचक स्वर था वीणा कालिया का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह।
2: मैं डॉक्टर विनोद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, IMS BHU। तो आज हम चर्चा करेंगे दूषित जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, GRDSS जैसी बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज मुख्यतः रिहाइड्रेशन, माने कि आपको समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है, सॉल्ट्स लेने हैं, एंटीबायोटिक दवाएं, जैसे कि हैजा या टाइफाइड के केस में होता है एंटीपैरासिटिक दवा, अगर वो अमीबियासिस है या GRDSS है, और सपोर्टिव केयर से किया जाता है। गंभीर मामले में तुरंत डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम

0: चर्चा करेंगे हैजा के बारे में, जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलरे। उसका मुख्य लक्षण है पानी जैसा दस्त, तेज दस्त का होना और डिहाइड्रेशन हो जाना, माने शरीर से एकदम पानी की कमी हो जाना, कमजोरी हो जाना, और उसमें खास बात होती है कि सूप जैसी मोशन होती है, तो एकदम सफ़ेद पानी जैसा दस्त होना। उसका प्रमुख इलाज है समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी लें, ORS का घोल पिए। अगर आप बिल्कुल भी मुंह से कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसके लिए फ्लूड लगवा सकते हैं, जो कि अस्पताल में या किसी कंपाउंडर या किसी क्लिनिक में ही संभव है। एंटीबायोटिक्स भी इसमें अच्छा खासा इसका रोल है। हम दूसरी बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है टाइफाइड। काफ़ी आम बीमारी है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। कई बार लोग कुछ जाँच करा के आते हैं विडाल, जो कि हर बार पॉजिटिव आ जाता है। तो एक चीज़ आप विडाल के बारे में जान लीजिए कि वो किसी भी बुखार में पॉजिटिव आ सकता, इसलिए अपने मन से इसके लिए दवा न लें। तो चलिए हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसमें कि तेज बुखार, पेट दर्द व कमजोरी हो। इसमें बुखार आमतौर नॉर्मल दवाइयों से भी नहीं जाता है। अगर बहुत तेज बुखार हो रहा है तो टाइफाइड एक बहुत प्रमुख बीमारी हो सकती है जो आपको इलाज कराना है। इसका मुख्यतः इलाज एंटीबायोटिक से होता है, और अगर आप उल्टी कर रहे हैं या फिर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको ORS या IV फ्लूड की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी बीमारी है पेचिस, जो कि शिगेला या अमीबा नाम पैरासाइट से होती है, जिसमें कि पैखाने में खून आना, म्यूकस आना, दस्त होना, पेट दर्द होता है। तो इसमें भी इलाज जो है मुख्यतः एंटीबायोटिक्स है, और अमीबा के लिए भी आपको एंटीबायोटिक लेना है, जिसके लिए कि आप डॉक्टर से परामर्श करके इसका इलाज कर सकते हैं। और एक और आम बीमारी है हेपेटाइटिस ए या ई, माने पीलिया, जिसे हम लोग जानते हैं पीलिया के रूप। तो ये एक वायरस के द्वारा होता है, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। इसमें आपको शुरुआत में आपको थकान लगेगा, पेट में दर्द लगेगा, उल्टी जैसा मन लगेगा, हो सकता है उल्टी भी हो जाए, और साथ में आपको कुछ दिनों बाद पीलिया दिखने लगेगा आंखों में। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन इसमें आराम, पोषण और हाइड्रेशन थेरेपी ही काम आती है। और ये बीमारियां चूंकि अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या किसी भी एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपको लगातार उल्टियां हो रही है, कोई दवा भी नहीं ले पा रहे हैं, और बुखार हो रहा, या फिर आप बेहोशी होने लगे, पेशाब का कम होना, ऐसा अगर कुछ होता है, या कहीं से ब्लड आ रहा हो जो रुक ना रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये लिवर फेलियर भी हो सकता है इसमें। हालांकि ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये होता है, तो इसलिए आप डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। इसके बाद अगली बीमारी है जियार्डियासिस, जिसमें कि एक परजीवी होता है जिसका नाम है जियार्डिया, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। इसमें लंबे समय तक दस्त होता है, पेट फूल जाता है, और फिर वही आपको कमजोरी लगने लगेगी अगर आपको दस्त बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो इसका भी इलाज एंटीबायोटिक है, जो अगर जांच के बाद अगर आपके जांचों में अगर जियार्डिया दिखाई देता है तो आप इसको दवाई ले सकते। फिर हम अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरोडेसिस। ये भी एक परजीवी के वजह से होता है, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरोडियम, जिसमें कि पानी जैसा दस्त होता है और कमजोरी होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। विशेषज्ञ थे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानसी संगीत में पाठ।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण

भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:45 और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे आर्यन मिश्रा। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे धनंजय कुशवाहा के गाय भजन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे पंडित सीताराम सिंह की गाय गजलें।

0: गैरफल में गीत गजलों का कार्यक्रम मंजुमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रसरंग में 7:45, रसमाधुरी में रात्रि 8:15, शाम 6:10, शाम 7:00 और झनकार में सुबह 10:00। स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर आप सुनेंगे सीमा सिंह से काव्य पाठ। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज की बातचीत का विषय है फूल गोभी की खेती। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर राजेश कुमार राय से दिनेश कुमार सिंह। इसी में श्रोता सुनेंगे मोहम्मद इस्लाम के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दोपहर 1:45 और सुबह 9:50 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 से, जिसमें आज श्रोता सुनेंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शाम 5:00 बच्चों का कार्यक्रम आप सुनेंगे नन्ही दुनिया, जिसमें आज की चर्चा का विषय है अनुशासन का महत्व। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया हम लेकर आएंगे, जिसमें गीत संगीत के साथ आज की बातचीत का विषय होगा गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं और इनका इलाज। इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर सुनीता सुमन से शिखा श्रीवास्तव। गैर फिल्म में गीत गजलों का कार्यक्रम कहकसा आप सुनेंगे दिन 12:00। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश आप सुनेंगे दिन 11:00। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7:00। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः क्रीडा क्षेत्रस्य विशिष्ट व्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभयदेशयोः मध्ये सुदृढ जनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैंडदेशे विशालं प्रवासी भारतीय सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इण्डोनेशिया देशयोः सफल यात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्र यात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान्। भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि प्रशंसाम् अकरोत्। भारतीय नौसेना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम् नगरे स्वीय षष्ठं प्रोजेक्ट 17A इति

नमस्कारम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त और चकाचकना। दोस्तों, सावन की आहट, गंगा की मधुर कलकल, मंदिरों की घंटियों की पावन ध्वनि और बाबा विश्वनाथ की नगरी का अलौकिक सवेरा, यही तो है बनारस की सुबह, जो हर दिन एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। तो चलिए इस खूबसूरत से सुबह में चाय की गर्मा गर्म प्याली के साथ मन को तरोताजा करते हैं और साथ ही दोस्तों ट्यून कर लीजिए अपने मोबाइल और रेडियो सेट पर आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट और नंबर 1 मॉर्निंग शो, द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। और साथ ही कीजिए आज की अपनी मॉर्निंग साथी शुचि का स्वीकार, प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

है बनारस क्योंकि सुबह हो चुकी है। दोस्तों, काशी एक अनूठी नगरी है। इस नगरी में स्थित सभी क्षेत्र इसकी विशेष पहचान है, लेकिन यहाँ के घाट अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है, जो काशी की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। ये घाट केवल स्नान एवं पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र का जीवन दर्शन है। तो आइए आज आपको गुड मॉर्निंग बनारस में घाटों की श्रृंखला के अंतर्गत ले चलते हैं हनुमान घाट की पर।

0: पकौड़ी। जागो जागो जागो, सुबह आ गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।
1: हाँ जी, जाग जाइए।

18वीं शताब्दी में निर्मित हनुमान घाट यहाँ स्थित हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे संत तुलसीदास द्वारा स्थापित मंदिरों में से एक माना जाता है। इस घाट का प्राचीन नाम रामेश्वर घाट था। मान्यता है कि काशी यात्रा के दौरान भगवान राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम महादेव का नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये रामेश्वरम शिवलिंग तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम का प्रतिरूप है। इस शिवलिंग का उल्लेख 17वीं शताब्दी के ग्रंथ गिरवाण पदमंजरी में प्राप्त होता है। 19वीं शताब्दी तक ये घाट अपने विस्तृत रूप में दंडी घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट के दक्षिण भाग तक फैला हुआ था। बाद में इसे विभाजित कर हनुमान घाट और कर्नाटक घाट नाम दिया गया। ऐतिहासिक रूप से ये स्थान दक्षिण भारतीय संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ स्थानीय दक्षिण भारतीय समुदाय के साथ काशी आने वाले तीर्थयात्री पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस घाट पर स्नान दान का विशेष महत्व है, जो इसे काशी की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व का प्रतीक बनाता है। तो कभी भी आपको दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर या वहां की संस्कृति को जीना हो तो बनारस में एक ही जगह है, हनुमान घाट, जहां आप वहां की संस्कृति और वहां के मंदिरों को देख सकते हैं। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, बातें तो हमारी होती रहेंगी, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और बने रहिए गुड मॉर्निंग बनारस में, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 7:08:50। तारीख है आज 11 जुलाई 2026, दिन है शनिवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। हर वार्ड में बांटे जाएंगे मुफ्त पौधे। पौधारोपण महायज्ञ को जन आंदोलन बनाने की तैयारी, राज्य मंत्री ने तैयारियों का जाना हाल। जी हां दोस्तों, 12 जुलाई को प्रस्तावित पौधारोपण महायज्ञ 2026 को जन भागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और पौधारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का अभियान है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो सके। समीक्षा के दौरान पौधारोपण स्थलों के चयन, गड्ढों की खुदाई, गुणवत्तापूर्ण पौधों की उपलब्धता, सुरक्षित परिवहन, सिंचाई, पौधे के संरक्षण, जियो टैगिंग, विभाग अखबार लक्ष्य और नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाए जिससे अभियान के दिन किसी प्रकार की असुविधा न। रविन्द्र जायसवाल ने निर्देश दिया कि नगर के प्रत्येक वार्ड में एक उपयुक्त स्थान या चौराहे का चयन कर वहां पर्याप्त संख्या में पौधे उपलब्ध कराए जाए और वार्ड वासियों को निःशुल्क वितरित किए जाएं। उनका कहना था कि इससे अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण अभियान से जुड़ेंगे। उन्होंने काशी की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए पान और कत्था के पौधों के साथ शहतूत, अर्जुन, चिरौंजी, महुआ जैसे उपयोगी एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे के वितरण और रोपण पर भी जोर दिया। साथ ही मुख्य मार्गों, सड़क डिवाइडरों, औद्योगिक क्षेत्रों, विकसित हो रही टाउनशिप, बस स्टॉप, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी उपयुक्त स्थानों पर बेल के पौधे लगाने का सुझाव दिया गया। मंत्री ने काशीवासियों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अंतिम संस्कार में बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए पेड़ों की कटाई होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इतने पौधे लगाने चाहिए कि वह प्रकृति पर अपने कर्ज की भरपाई पहले ही कर सके। उन्होंने सभी नागरिकों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने का आग्रह किया है। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिक की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में पौध भंडारा आयोजित कर ग्रामीणों और किसानों को पौधे वितरित करने के निर्देश भी दिए। विद्यालयों में बच्चों के बीच गीत संगीत, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वाराणसी में वीवीआईपी सुरक्षा होगी और मजबूत। 122 पुलिस कर्मियों ने पूरा किया विशेष प्रशिक्षण। 30 महिला दरोगा ब्लेजर ड्यूटी पर होंगी।

तैनात। जी हाँ दोस्तों, कमिश्नरेट वाराणसी में वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में आयोजित 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप तकनीकी दक्षता, सतर्कता, अनुशासन और व्यावहारिक कौशल के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। कमिश्नरेट वाराणसी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट अतिथियों, संवैधानिक पदाधिकारियों और अन्य वीवीआईपी के लगातार आगमन को देखते हुए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत कुल 122 पुलिस कर्मियों, जिनमें उपनिरीक्षक और आरक्षी शामिल थे, उन्हें विशेष सुरक्षा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में प्रभावी ढंग से सुरक्षा व्यवस्था संभाल सकें। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने वीआईपी सुरक्षा के सिद्धांत, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के दायित्व, रिंग राउंड टीम टैक्टिक्स, थ्रेट प्रोटेक्शन, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, एक्सेस कंट्रोल, चेकिंग एवं फिक्सिंग की मानक प्रक्रिया, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन सिस्टम, वीआईपी फ्लीट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, बॉडी लैंग्वेज, आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़ी चुनौतियों सहित जनसभा, रोड शो और वीआईपी यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। वाराणसी में बदली स्कूलों की टाइमिंग, बीएसए ने जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, जिले में बारिश के बाद गर्मी का असर कम हो गया है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से निर्देश जारी करते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। ये आदेश कक्षा 1 से 8 तक के साथ ही नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी पर लागू होगा। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में संचालित सभी परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त व अन्य बोर्डों के समस्त अंग्रेजी, हिंदी के माध्यम के विद्यालयों का संचालन समयावधि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित कर दी है। बीएसए ने सभी शिक्षकों और सहायक अध्यापकों को समय से विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षण और अन्य दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 11 जुलाई में क्या है खास।

सन 1922 में आज ही के दिन हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई थी। सन 1979 में अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब विखंडित होकर ऑस्ट्रिया के पश्चिमी तट के समीप समुद्र में गिरा था। सन 2002 में आज ही के दिन चांग शोंग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 2003 में लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदा ए सरहद बस का परिचालन हुआ था। सन 2004 में आज ही के दिन एचआईवी एड्स पर एशियाई मंत्रियों का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। सन 2007 में चर्चित चित्रकार एमएफ हुसैन ने न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। और बात करें आज जन्मे व्यक्तित्व की, तो सन 1956 में आज ही के दिन अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार का जन्म हुआ था। सन 1920 में आज ही के दिन वी आर नेदुनचेंजियन तीन बार तमिलनाडु राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। सन 1902 में आज ही के दिन सरदार बलदेव सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री थे। सन 1899 में आज ही के दिन राजस्थान के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री रहे सी एस वेंकटाचार का जन्म हुआ था। सन 1857 में आज ही के दिन भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता सी शंकरन नायर का जन्म हुआ था। और बात करें आज जिन व्यक्तियों ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो सन 2003 में भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन आज ही के दिन हुआ था। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें, और अब समय हो गया है आप सबसे टाटा बाय बाय करने का। मिलूंगी जल्द ही आपसे इस कार्यक्रम में अगले घाट की रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हमारे लिए नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
3: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
2: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में

0: बौड़ा धाम, बदेश्वर नाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, बदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1,283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। टेकू अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में 4-लेन सड़क सहित 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान 4-लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
3: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया

0: वर्कर है वो लगा है, हमारे यहाँ से एचएस लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार हैं आर्यन मिश्रा। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भोलानाथ मिश्र और राग है जौनपुरी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार थे आर्यन मिश्रा, इनके साथ तबले पर संगत की थी भोलानाथ मिश्र ने और राग था जौनपुरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान

0: रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visits by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही हमारे विशाल विस्तृत इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज हैं और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशन बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन 5 MOUs इन की एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
1: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ़द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर

0: अजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाजा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए, ताकि तवील मुद्दती शराकतदारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तिराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाजों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमनो इस्तेकाम की बुनियादी जामीन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारतीय बहरिया के जंगी जहाजों को डिजाइन करने वाले ब्यूरो के डिजाइन करदा और मुंबई में मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फतह और जमीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाजों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शाकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीह मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तिजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी, उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निजाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तहीं अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनवाल के साथ

श्रोताओं स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं यानी आपकी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे उम्मीद की यानी आशा की किरण की। उम्मीद वो दीपक है जो आंधियों में भी जलता रहता है। उम्मीद वो विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना देता है। उम्मीद वो मुस्कान है जो हर कठिनाई के बाद भी हमारे चेहरे पर बनी रहती है। आज का हमारा विषय है उम्मीद की किरण। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। कभी परिस्थितियां हमारा धैर्य परखती हैं, कभी समय हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो आइए गीतों का ये सफर शुरू करते हैं। इस

दोस्तों, नई सुबह नई उम्मीद हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा हो, आज हमें फिर से आगे बढ़ाने का मौका देता है। इसी नई शुरुआत और नए विश्वास का स्वागत करते हुए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम के बाकी नगमों के साथ हम अभी लौट कर आते हैं एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत भी बनाती हैं। और जो व्यक्ति संघर्ष से सीखता है, वही सफलता का असली आनंद पाता है।

दोस्तों अपने ही हमारी ताकत हैं। सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि अपनों का साथ और उनका विश्वास भी बहुत जरूरी होता है। जब परिवार, मित्र और आपके शुभचिंतक हमारे साथ होते हैं तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। उम्मीद से सफलता तक हर संघर्ष का अंत सफलता नहीं होती है, लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष जरूर होता है। जब हम हार मानने की बजाय फिर से खड़े हो जाते हैं तब हमारी मंजिल हमारे और करीब आ जाती है।

दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है और हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए जीवन में कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद ही वो शक्ति है जो हमें हर बार फिर से मुस्कुराना सिखाती है। आज के इस कार्यक्रम का संदेश केवल गीतों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो कभी निराश हुआ हो। तो आइए हम संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे। हम दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की एक किरण बनेंगे और हम मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना करेंगे। याद रखिए कि उम्मीद कभी छोटी नहीं होती और निराशा कभी अंतिम नहीं होती। जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसकी राह में मंजिल स्वयं कदम चूमती है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम मधुरिमा समाप्त करने की अब दीजिए अपने रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को अनुमति। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।
1: का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
3: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1,200 रूपए की धनराशि भेजी गयी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
4: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
3: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास

और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने

0: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
1: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। एनओसी जब इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
2: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
3: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
5: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
3: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरन सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक

0: इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 9:25 होने वाले हैं। अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अबू सालिक पुत्र मोहम्मद अबरार आलम रेवड़ी तालाब भेलूपुर वाराणसी से दिनांक 23 जनवरी 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 15 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 4 फुट 3 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। थाना जफराबाद जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कुसुमपाल पत्नी संजय पाल रामनगर भटसरा थाना जफराबाद जिला जौनपुर से दिनांक 24 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 35 वर्ष है, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा और इनकी लंबाई 4 फीट 11 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना जफराबाद जिला जौनपुर को सूचित करें। अब लीजिए सुनिए अगली सूचना। कोतवाली मछली शहर जिला जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ममता बिंद पत्नी राजनाथ बिंद निवासी डिवढ़िया थाना मछली शहर जिला जौनपुर से दिनांक 3 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 25 वर्ष है, लंबाई 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या कोतवाली मछली शहर जिला जौनपुर को सूचित करें। थाना चकरघट्टा जिला चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार संत राशि देवी पत्नी बलवंत जय मोहिनी थाना चकरघट्टा जिला चंदौली से दिनांक 3 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 32 वर्ष है, लंबाई इनकी 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये मानसिक रूप से कमजोर हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चकरघट्टा जिला चंदौली को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार कांति देवी पत्नी राजकुमार राव निवासी कचनरवा टोला बिसाहू की खाड़ी थाना कोन सोनभद्र से 4 सितंबर 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 35 वर्ष, चेहरा गोल, लंबाई 5 फीट 1 इंच है, रंग सांवला है इनका। इनके बारे में आपको अगर कोई भी सूचना मिलती है तो अपने निकट के थाने या थाना कोन सोनभद्र को सूचित करें।

स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, यही है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाओ, रोज सफाई करना न भूलो। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का ये हो सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: इसलिए एक मसला बनता जा रहा है ये।
1: डॉक्टर महमूद साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मुसबत सोच रखने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है तो हमारे मुल्क और दुनिया की बेहतरी के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ये बताएं आप कि इसके लिए जो वसाइल हैं क्या वो भी उतनी तेजी से बढ़ सकते हैं जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है?
2: देखिए, आपको मालूम है कि हमारा मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस मुल्कों में से एक है। चाइना को भी पीछे हमने छोड़ दिया।
1: जी
2: लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखें कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ साल पहले और कई बार ये बात कही है कि हिंदुस्तान का एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है
1: जी
2: और वो मुल्क को आगे बढ़ने में मदद करने को
1: कर
2: तैयार
1: सकते
2: है। अब मसला सिर्फ यही है कि क्या हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड मैन पावर है या नहीं। इसमें गवर्नमेंट को जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो जो पिछले दिनों में एक सिस्टम था कि जो ऐसे अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूशंस खोले
1: जी
2: और अच्छे क्या
1: अफराद
2: समझें,
1: तालीम याफ
2: नासा और सिलिकॉन वैली, ये सब यहाँ पे हिंदुस्तानी ज़्यादातर काम कर रहे
1: जी
2: हैं। वो
1: जी
2: टाइम को प्रॉपर ट्रेंड जो है वो मैन पावर
1: यूटिलाइज
2: को
1: करना
2: हमें हमें क्रिएट करना पड़ेगा।
1: जी
2: अच्छा, अगर आप ये देखें कि फीमेल फर्टिलिटी रेट होती है
1: जी
2: जिससे पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज का अंदाज़ा हो जाता है,
1: बिल्कुल
2: तो वो ब्रेक इवन टाइप, यानी जितनी आप जो है वो फर्टाइल एज में माएँ हैं या कपल्स हैं, वो उससे ज़्यादा जो है वो कर पैदावार है उनकी या नहीं है, तो ब्रेक इवन जो है 2.1 पे है। यानी जितनी पॉपुलेशन मेंटेन हम कर सकते हैं वो
1: जी
2: 2.1 पर है। तो अभी फिलहाल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन फीमेल फर्टिलिटी रेट 1.9 पहुंच गई है, यानी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इटली है सपोज
1: जी जी
2: करिए,
1: जी
2: या चाइना भी है, वो प्रमोट कर रहे हैं अपने
1: जी
2: यंग जनरेशन को कि
1: जी
2: शादी करें, बच्चे पैदा करें,
1: जी
2: क्योंकि
1: चाहिए वो मैन पावर
2: जी
1: चाहिए
2: मैन पावर
1: और
2: हमारे
1: यंग
2: ऐसे
1: पावर
2: लोग जा रहे हैं
1: चाहिए।
2: उनको सस्टेन करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन सस्टेन करने के लिए। पूरा कॉन्टिनेंट डाइंग है, पूरे पूरे विलेजेस खाली हो रहे हैं।
1: जी
2: अब फीमेल फर्टिलिटी रेट के बारे में बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो बीमारू स्टेट्स में है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
1: जी
2: बीमारू स्टेट्स। तो इसमें यूपी की 2.6 है, बिहार की 2.9 है। अब आप उसको देख लें और दूसरों को देखें, केरला 1.5, केरला इज 100% एजुकेटेड,
1: जी
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल हंड्रेड
2: 100%
1: परसेंट एजुकेटेड है,
2: आप उसको ले लें।
1: बेहतरीन
2: कश्मीर
1: उनका
2: को,
1: तर्ज जिंदगी है।
2: JNK को ले लें 1.5, यानी
1: जी
2: नेशनल एवरेज से भी नीचे है।
1: जी
2: तो डिपेंड करता है कि हम ठीक है, हमारे वसाइल लिमिटेड है, हर कंट्री के वसाइल लिमिटेड है,
1: बिल्कुल
2: हमारे पास जो फर्टाइल लैंड्स हैं दे कैन सस्टेन, वो सस्टेन किया तभी आगे हैं।
1: जी
2: ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, तो ये सब चीजें हम जो पिछले दिनों में जो इम्पोर्ट करना पड़ता था, गेहूं और ये सब चीजें,
1: जी वो आज हम खुद पैदा कर
2: अजनास,
1: रहे हैं,
2: अब हम
1: हम खुद
2: खुद पैदा कर रहे
1: खुद
2: हैं।
1: कफील
2: तो
1: हैं।
2: सवाल यह है कि अपनी यंग जनरेशन को प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहे हैं चाइना की तरह।
1: जी फजल भाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो यंग जनरेशन है अगर वो अच्छे से ट्रेंड हो और सही सिमत में चले तो हम भी बड़े ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो हुदूद अरबा है अपने मुल्क का, और उसके अंदर पैदा होने वाली ग़ज़ाएँ हैं, जो अनाज है, क्या वो सब हमारी उस बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी है?
3: देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से जितने इदारे खोले जा रहे हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी हो रहे हैं।
1: जी
3: उसकी वजह यह है कि वो आप कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं कोई IIT में चले जाइए, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको
1: जी
3: वहाँ वैसे फैसिलिटी मिले मिले, लेकिन तब मिले ना, जब वो जो है एक तबका जो दौलतमंद है वो तो
1: सब कुछ
3: फ़ायदा
1: हासिल कर
3: उठाता
1: रहा
3: है,
1: है।
3: लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से यह है कि उसी की वजह है कि मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। बकौल

0: कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं,
1: जी
0: तो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्या मकसद है? इतनी
1: उनको
0: बड़ी तादाद में फ्री अनाज दिया जाना, ये तो जो मुल्क के वसाइल हैं वो भी सब खत्म हो रहे हैं,
1: बिल्कुल, और लोग आदी हो रहे हैं फिर
0: आदि हो रहे हैं
1: आदमतर
0: उससे।
1: भी के। डॉक्टर आजमी साहब, जिंदगी की बुनियादी तीन जरूरियात हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे मुल्क की इस बढ़ती आबादी को किस हद तक मैसर है बआसानी?
2: ये हमारे मुल्क के हालात जो हैं उसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि 50% कम से कम लोग ऐसे हैं अभी जो बेघर हैं
1: जी
2: और बहुत ही सतही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास अपना कोई स्टेटस है, ना कोई मेयार है, ना कोई शऊर है। तो उस तरह की चीज़ों को देखकर लगता है कि सोसाइटी अभी हमारी बहुत ही अनकल्चर्ड बिल्कुल फील हो रही है।
1: जी
2: अगर वही एक एजुकेशन हो जाए उनके अंदर, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए तो शायद वो और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि मुल्क क्या है, तरक्की किसे कहते हैं, कि आबादी किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसको समझने का शऊर ही नहीं है। अगर ये तालीम और तालीमी बेदारी आ जाए लोगों में तो शायद ये पता चले कि ज़िंदगी किसका नाम है, क्या सबसे पहले कपड़ा ज़रूरी है, कि पहले मकान ज़रूरी है, कि पहले रोटी ज़रूरी है। और ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोटी तो मिल गई किसी तरह से, तो कपड़े नहीं मिले, कपड़ा मिला तो मकान नहीं मिला,
1: जी
2: तो वो कहीं ना कहीं कमी है। और जिस रेशियो में आबादी बढ़ रही है, वसाइल तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो दिक्कतें हैं आज और ऐसी होती रही। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया, शायद आने वाले दिनों में फुटपाथ वाली ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्लैट की ज़िंदगी कम हो जाएगी। अच्छा, पोल्यूशन का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, गुर्बत का बढ़ना, ये तमाम मसाइल जो हैं वो सब बेरोज़गारी और इससे आपके यहाँ बढ़ती हुई
1: तालीम के
2: आबादी से
1: पीछे।
2: ताल्लुक़ रखते हैं।
1: जी
2: अगर आपने उसको सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो शायद धीरे धीरे हालात सबके बन जाएं और सब बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक थिंकर ने कहा था कि हमारे जो वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4 के रेशो से बढ़ते हैं, जबकि आबादी जो है वो 2, 4, 6, 8, 12 के रेशो से बढ़ती है। तो हमारे मुल्क में जो तेजी से आबादी बढ़ रही है वसाइल के मुकाबले में, उसके वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है?
3: देखिए, ये फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, ये एक पॉइंट या दो पॉइंट का सिस्टम नहीं होता है कि आप एक लाइन पे चलें पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ये एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है,
1: जी
3: यानी इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्ची की पढ़ाई,
1: जी
3: यानी माँ की पढ़ाई, पढ़े लिखे हो।
0: जी जी
3: अब देखेंगे कि जो बगैर पढ़े लिखे फैमिली हैं उन्हें बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, और जो पढ़े
1: बिल्कुल
3: लिखे माँ है वो एक दो से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, या दो
0: जी
3: तीन। दूसरी बात यह है कि उसको सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल
1: जी
3: सिक्योरिटी में पढ़ाई भी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है,
1: आसानी से वो सब कुछ कर सकती।
3: एम्प्लॉयमेंट।
1: जी
3: तीसरी चीज़ हेल्थ है, यानी
0: जी
3: उसको मालूम होना चाहिए उस फैमिली को कि मेरे पास दो बच्चे हैं तो वो जवानी तक पहुंच जाएंगे, और
0: जी
3: अब हेल्थ
0: जहां
3: इश्यूज।
0: तक पहुंच सकता।
3: उसके बाद एक सिक्योरिटी का भी मसला है।
1: जी बिल्कुल
3: जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में नहीं होगा प्रॉपर,
0: जी
3: तो डर और खौफ का जो माहौल है,
1: जी जी जी
3: वो डर और खौफ से जो दबे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करने। आप गांव में चल जाइए, जिसका बड़ा खानदान होता है वो ज़्यादा हावी होता है।
1: हावी
3: जी
1: हो जाता है। जी जी
0: जी
1: बेशक,
3: आप प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिए,
0: जी
3: जाकर
0: जी जी
1: तादाद पर मुनहसिर करता
3: तादाद
1: है।
3: पर मुनहसिर होता है।
1: जी
3: तो वहां पर जो ताकत है, या प्रधानी का सपोज करिए या किसी और चीजें जो है, वो ये सोचता है जो कमजोर आदमी है या बगैर पढ़े लिखे फैमिली है, वो ये सोचता है कि मेरे तो हाथ पैदा हो रहा है।
0: जी
3: मान लीजिए वो आदमी जो है वो साइकिल के पंक्चर जोड़ रहा है, तो वो दो वो चाहिए उसको हाथ, तो वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा मेरी जगह ले ले,
0: जी
3: दूसरा बच्चा दूसरे
0: जी
3: काम पे लग जाए
0: जी जी
3: या मजदूरी करने लगे।
0: लेबर
3: तो
0: प्रोडक्ट
1: उनकी सोच ये है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी
0: उतनी
1: ज्यादा हमारे
3: ज्यादा।
1: माशी
3: तो ये
1: हालात बेहतर
3: गवर्नमेंट को
1: होंगे।
3: ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देना पड़ेगा आपको,
1: जी बिल्कुल,
3: एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगी,
0: मेडिकल
3: हेल्थ
0: सर्टिफिकेट
3: इंप्रूव करना पड़ेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का ध्यान करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना पड़ेगा, सोशल से
1: और
3: मतलब
1: इन सब
3: सिक्योरिटी
1: चीजों को
3: को।
1: इतना आसान करना पड़ेगा कि हर बंदे तक वो बआसानी पहुंच सके, हर
3: जी,
1: एक
3: एजुकेशन
1: उसका फायदा उठा सके।
3: एजुकेशन
1: अभी
3: सबसे आगे
1: आपने
3: है
1: एक बात
3: पॉपुलेशन में,
1: कही सिक्योरिटी
3: बस वही।
1: के नजरिए से, तो उसी की वजह है शायद कि हमारे मुल्क में कम उम्री की शादियों का भी चलन बढ़ता जा रहा है,
0: बिल्कुल बात
1: हालात को
0: सही
1: देखते हुए कि जल्दी बच्ची को अपने घर का कर दो ताकि हम इसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सकें।
3: है। एजुकेशन जब तक हम इम्प्रूव नहीं
0: जी
3: करेंगे,
0: तब तो कुछ नहीं होगा।
3: सिक्योरिटी नहीं दे,
1: माँ बाप इस चीज से डरते हैं कि हम कब तक बच्ची की हिफाजत करेंगे, किस तरह उसे बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजें, किस तरह उसको कहीं हम जॉब के लिए भेजें, उससे बेहतर है इसे जल्द से जल्द अपने घर का कर दूं।
0: नहीं ये तो खैर सोच है ही, चूंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, सियासत असल में इन्वॉल्व है यहाँ,
1: जी
0: कानून के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर। अगर ये सब अलहदा हो जाए और कोई किसी ने पुलिस को आज़ादा

0: ना वो कार्रवाई कर देते हैं तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब हर आदमी अपने आप को तहफ़ महसूस करेगा। लेकिन तहफ़ किस लिए नहीं है कि जो जैसे रक्षा बंधन में भी कहा कि अभी आबादी जैसी बढ़ेगी, जैसे एक गांव है वहां पर जो एक बड़ी तादाद है एक फिर एक खानदान की,
1: जी
0: वहां भी होता इसी तरह यहाँ भी यही है कि वो तहफ़ नहीं मिल पा रहा है
1: जी
0: जो हमारी बच्ची है। इसलिए हर आदमी खौफजदा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखूं।
1: डॉक्टर साहब, आप तिब्बी मैदान से जुड़े हुए हैं, इस सिलसिले में शरह अमवात जो कम हुई है नई दवाओं के जरिए, क्या वो भी हमारी बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? जैसे पहले होता था कि बहुत तरह की वबाएं फैलती थी, बीमारियां फैलती थी और बस्ती की बस्ती खत्म हो जाती थी, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो जाते थे। अब हमारी दवाओं ने, हमारे नए नए टीकों ने इस तरह कंट्रोल कर लिया है उन चीजों पर, तो क्या वो भी जिम्मेदार है कहीं?
2: देखिए, ये तो एक मुल्क का या एक सोसाइटी का या एक सिविलाइजेशन का एक तरीक़ाकार होता है।
1: जी
2: वैसे ही टेक्नोलॉजिकल आजकल एडवांसमेंट्स कह लीजिए आप, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या हेल्थ में एडवांसमेंट्स या ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड की डेथ के रेट है आप
1: जी
2: जो
1: शराय
2: जिस
1: अमवात
2: जी
1: कम।
2: तो वो ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये इट इज़ ए इंडिकेटर दैट आवर हेल्थ सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली,
1: जी
2: यानी हमारा हेल्थ सिस्टम सही है, उसमें गिरावट आ रही है और गिरावट फीमेल फर्टिलिटी में भी आ रही है। तो इसकी ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि हमारे बच्चे ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं या ज़्यादा एडल्ट एज को पहुँच रहे हैं। ये चीज़ को हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है और उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं।
0: आबादी जो बढ़ रही है रोज अफजो, उसको हमें कंट्रोल करना है।
1: उसमें इजाफे को रोकना है
0: हाँ, अब
1: जो।
0: इजाफे का क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अभी ये कानून बनाने की बात हो रही थी कि साहब जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो उसको टिकट नहीं मिलेगा या वो एमबी
1: सरकारी
0: नहीं हो
1: नौकरियों में
0: सकता है,
1: नहीं आएगा।
0: सरकारी
1: जी
0: नौकरी नहीं
1: हाँ
0: मिल सकती।
1: डॉक्टर आजमी साहब, ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आबादी को हम कंट्रोल करें, उसमें इजाफे की तरफ तवज्जो दें, तो उसके लिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ हुकूमत की ही हैं या अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क को बेहतर वसाइल देने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा या हुकूमत ही इसके लिए कोई ऐसा सख्त कदम उठाए?
2: नहीं, इसमें तो दोनों को सोचना पड़ेगा। एक तरफ एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी कि अगर
1: जी
2: आपने इन चीज़ों को इख्तियार किया तो ये नुकसान हो सकते हैं, उसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस पब्लिक के अंदर लानी पड़ेगी।
1: जी
2: और हम खुद एक ज़िम्मेदार शहरी अगर हैं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन या हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल कैसे बने।
1: जी
2: खुशहाल बनने के लिए वसाइल का बढ़ना, आबादी का घटना कम होना, मतलब ये
1: जी
2: दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों रेशियो बराबर चलते हैं तो एक खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल अपने
1: बिल्कुल
2: मुल्क का बना सकते हैं। ये दोनों की ज़रूरत है कि दोनों अपनी अपनी पॉलिसी बनाएं और एक पढ़ा लिखा इंसान वो सोचे कि हम हमारी
1: हमारी
2: जिम्मेदारी
1: क्या
2: क्या होती है।
1: जिम्मेदारी है। बिल्कुल
2: अगर वो जिम्मेदारी निभाता है तो कामयाब है और नहीं निभाता है तो सबके सब नाकाम होंगे।
1: तो हमारे जो आज का ये मुबाहिसा था, तबादला ख्याल था, इसका लुबलुबाब यही निकलता है कि जो बढ़ती आबादी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं इसलिए कि हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, हमें अपने बच्चों को आबाद करने के लिए घर बनाने हैं, पेड़ कट रहे हैं लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, जिसकी वजह से हमारा जंगली जो जिंदगी है, जंगली जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, जिससे फिजाई आलूदगी, तरह तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं, जंगली जानवर बस्तियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
2: इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा
1: जी
2: है।
1: हाँ, खेती की जमीन कम होती जा रही है। कहना बेजाना होगा कि एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वुसत में खो गया। तो इन हालात को देखते हुए हम हर हिंदुस्तानी, बल्कि दुनिया के हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हम उतनी ही आबादी अपने घर की, अपने खानदान की बढ़ाएं जिसे हम बेहतर वसाइल मुहैया करा सकें और जिसे बेहतर तालीम के साथ हम अपने मुल्क के लिए मुस्बत सोच वाला शहरी बना सकें,
0: बिल्कुल
1: ताकि वो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को एक आइडियल मुल्क, एक आइडियल शहर बना सके और हम तरक्की के दौर में दूसरे ममालिक से आगे निकल सकें। तो सामीन, अभी हमने बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी इस मौजू पर تبادلہ خیال کیا۔

0: और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे मधु किए हुए जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए थे, एक बार फिर उनके बारे में आपको बता दें। हमारे साथ थे डॉक्टर इश्तियाक आलम आज़मी साहब, डॉक्टर महमूद अली खान साहब और जनाब फजल शाह फजल साहब। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस अहम मौजू पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप रामपुर मरकज पर तैयार आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की अपनी मेजबान रबाब अंजुम को इजाजत दें। अलविदा।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लोकगीत। आज के कलाकार हैं मोहम्मद इस्लाम। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए देवी गीत।

0: इस खूबसूरत लोकगीत के बाद अब लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में दादरा गीत।
1: सनावा के डोरिया से हथवा पिजैले मोर बलमुआ हो।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आज के कलाकार थे मोहम्मद इस्लाम। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कब तक चुप रहूंगी से। आवाज मोहम्मद अजीज और साथियों की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में अब लीजिए सुनिए विवाह फिल्म से ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में बलमा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में दो रास्ते फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अबली जी सुनिए बेताब फिल्म का ये गीत। शुरू से सजाया है लता मंगेशकर और सबीर कुमार ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हंसते जख्म जख्म से ये गीत। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में आप लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म से ये गीत। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिवहरी ने।

अब लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अब लीजिए सुनिए फिल्म आ अब लौट चले से ये गीत, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की। गीत लिखा है इब्राहिम अस्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम, तूफान है कोई।
0: नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। रफी साहब का जवाब नहीं, लेकिन जवाब आपका भी नहीं, प्रयास तो आपने अच्छा किया है और प्रयास कामयाब इसलिए भी हुआ कि आज प्रोग्राम में आपका पहला फोन है।
6: बिल्कुल बिल्कुल, और आवाज कट लड़ लड़ के आ रही थी ना, इस वजह से गीत गाने में थोड़ा।
0: आजकल देखिए जो लड़ाई है ये हर जगह है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो टेलीफोन लाइनों में भी ये लड़ाई हम लोग भी देख रहे हैं काफी अरसे से, कि इस तरह की दिक्कतें तो पेश आ रही हैं।
6: बिल्कुल, मैं पहले गीत बता देता हूँ फिर उसके बाद बात करता
0: हूं। नहीं, पहले अपना नाम पता बता दीजिए, उसके बाद गीत, उसके बाद बातें।
6: मैं कुटवा बनारस से मोसी मंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी, अब बताएं कौन सा गाना आप कह रहे हैं।
6: हाँ, एक गीत है, दिल है तुम्हारा मूवी का, मस्ताना मौसम है रंगी नजारा, क्योंकि अपने बनारस में अब बारिश
0: शुरू हुई है।
6: और अच्छा मौसम भी हो गया अब।
0: जी जी, इसलिए आपका दिल जो है वो गाने बजाने के लिए बेताब हो गया है।
6: बिल्कुल, मजा आता है इस मौसम में क्योंकि गर्मी काफी झेल चुके हम लोग। और काफी गर्मी इस साल पड़ी है।
0: यानी ये दिल है तुम्हारा का टाइटल सॉन्ग ही है।
6: जी जी, दिल है तुम्हारा।
0: जी जी, और मौसम तो बदला है, ये है कि गर्मी जितनी ज्यादा और तेज थी, हालांकि बारिश एक दो रोज हुई है, लेकिन अभी और पर्याप्त जिसे कहते हैं वो तो अभी नहीं हुई है।
6: हाँ, मगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ बहुत ही अच्छा, मतलब बारिश कल तो दिन भर हुआ यहाँ पे बारिश।
0: अच्छा, थोड़ा आप आउटर में है।
6: जी जी, गाँव एरिया की तरह है।
0: तो हरियाली होगी और वहाँ असर अच्छा होता होगा कि बारिश हो जाए तो मौसम ठीक हो जाता होगा।
6: हाँ,
0: वरना बीच शहर में तो गर्मी उमस अभी भी है कुछ उसी तरह की।
6: हाँ, बहुत जगह अभी भी है। और मेरे यहाँ कल से धूप अभी नहीं निकला हुआ है, मौसम रोमांटिक अच्छा बना हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, मौसम अच्छा है यानी रोमांटिक भी है।
6: जी जी
0: जी जी,
6: रोमांटिक भी है। आप कैसे हैं?
0: अब हम तो बस आप लोगों की दुआओं का मुंतजिर हैं।
6: और कल का व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम सुना?
0: जी जी,
6: अच्छा लगा सुन के। और कुछ बदलाव चाहते हैं।
0: जी जी, और वो बदलाव आप चाह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हक में या हाथ में हर चीज होती नहीं, बता दें आप।
6: वही बदलाव चाहते हैं कि जब तक ये चालू नहीं होता एफएम पे, क्योंकि एफएम पे सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। शकील भाई भी हमसे ये बात 2-3 बार कह चुके हैं।
0: जी,
6: उनकी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द एफएम पे आ जाए तो उनको भी आसानी हो जाए सुनने में।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी। सुनील कुमार सिंह, पटेल नगर, मुगल फ्रेंड।
0: जी जी, तो आज शुरुआत में ही फोन लग गया आपको, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी।
1: जी जी, प्रयास कर रहे थे, 50 और 52, इत्तेफाक से 50 पर लग गया।
0: हाँ, ये श्रोताओं को बता दें कि शुरुआत में हमने हर बार इधर कई हफ्ते से देखा है कि 52 नंबर पे लाइन में 10-15 मिनट तक आवाज थोड़ी नहीं आती है, मुश्किल से आती है।
1: जी जी जी, हमने कार्यक्रम में यही बात को सुना हुआ था, इसीलिए जो है हम
0: जी, और ये थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा और फिर इस पे कॉल आने लगेंगे, लेकिन शुरू में तो 50 पे आवाज ठीक ठाक आती है। और बताएं कैसे हैं, मौसम बदल गया?
1: जी, मौसम तो इस समय सर खुशगवार हो गया है, 2 दिन से तो अच्छा मौसम है।
0: जी जी, और तब तो आपका ध्यान जो है वो आपके छत की जो फुलवारी है, बगीचा है, नर्सरी है, उसकी ओर जा रहा होगा।
1: बिल्कुल सर, अब हरियाली आ गई है।
0: और वो गिलहरियों वाला, फिर वो श्रोता हमें मिले नहीं जिन्होंने कहा था कि गिलहरियां परेशान करती हैं।
1: ऐसा सर, गिलहरियां तो हैं, लेकिन बिना कोई उपाय का ही अब परेशान करना थोड़ा बंद कर दिया।
0: जी जी, उनको भी जैसे सामंजस्य बैठाना जीव जंतुओं को भी आ जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो हालांकि उन्होंने क्या कहा था कि गिलहरियां उनके पौधों को नुकसान कर रही, तो आपने बताया था कि थोड़ी थोड़ी जगह पे उनके लिए दाने रख दिए जाएं तो वो चीज नहीं होगी।
1: ऐसा सर, दाने वगैरह पानी वगैरह तो हम रखते ही हैं, छत पर कबूतर वगैरह हैं या चिड़ियों के लिए।
0: जी जी,
1: तो उसमें सबके लिए सामूहिक हो गया, चाहे गिलहरी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, सब हो गए उसमें, जो है गिलहरी भी उसमें आ गई, लेकिन उसके अलावा फिर भी नुकसान करती है, लेकिन इधर तो नहीं कर रही है।
0: वो समझ गई होंगी कि प्रोग्राम में ये बात पहुंच गई है शिकायत उनकी।
1: आकाशवाणी के माध्यम से सुन ली होंगी।
0: जी बिल्कुल, देखिए गीत संगीत का असर तो हर किसी पे पड़ता है।
1: जी,
0: जी, और प्रोग्राम के बारे में जरूर वहां पर आप सहित तमाम लोगों को कहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने पत्र के लिए धन्यवाद में लिखना कम कर दिया है, नए नए श्रोता आ रहे हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है।
1: जी जी जी, नहीं नहीं सर, ऐसी बातें नहीं है, थोड़ी व्यस्तता हो जाती है तो थोड़ा सा लिखने में जो है थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है। और
0: जी जी, तो अब बताएं कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें।

0: सोचा नहीं, लेकिन मौसम के अनुरूप जो है कोई गीत सुन लिया जाए जो इस मौसम में अच्छा हो।
1: जी
0: जी, लोफर फिल्म का सुनवा दीजिए, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
1: तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और रफी साहब की आवाज। बहुत शुक्रिया सुनील जी, नमस्कार
0: जी, धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थोड़ा सा ये प्रयास किया कीजिए कि जैसे ही फोन लग जाए तो ऐसा करें कि आवाज ठीक ठाक रिकॉर्ड हो, क्योंकि आप भी सुनते होंगे बहुत सारी आवाजें सही रिकॉर्ड नहीं हो पाती श्रोताओं की।
1: अच्छा, सही आवाज आ रही
0: है। जी बिल्कुल, तो ये ध्यान दें हर श्रोता कि डिस्टेंस न रखें और स्पीकर ऑन न रखें और कोई भी अदर वाईफाई जैसा या ये सब चीजों का जो इक्विपमेंट होते हैं कान में लगाने वाले ईयरफोन जैसा सीधे मोबाइल से बात करें तो आवाज अच्छी आती है।
1: हम गांव में रहते हैं सर,
0: हो सकता है नेटवर्क कभी कभी दिक्कत आती होगी। तो गांव में आप हैं तो अब तो मौसम गांव में भी ठीक ठाक हो गया खेती बाड़ी वाला।
1: कल बारिश हुई।
0: जी जी,
1: ग्राम पचोखर में कल बारिश हुई।
0: हाँ, अब तो देखिए जुलाई का करीब आधा महीना हो रहा है और अब तो बारिश होनी चाहिए, क्योंकि यही वो मौसम है जब खेती किसानी का काम बहुत जोर शोर से शुरू हो जाता है। प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं ताकुर से कहा लगा जो था।
0: जी जी,
1: ताकुर से कहा हमें बहुत अच्छा लग रहा
0: है। जी बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, और अब किस गाने की आज फरमाइश है आपकी?
1: हमें एक गाना सुनना है फिल्म नील कमल का, बाबुल की दुआएं लेके जा जा।
0: हाँ, बड़ा प्रसिद्ध गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में और साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा, रवि का संगीत है और वर्षों से ये गीत सोचिए सुना जा रहा है उसी तरह से।
1: कुछ दोस्तों का नाम ले लें।
0: जी बताएं।
1: रमेश चंद्र मिश्रा तेजी गुरु प्रधान और राजन राज संतोष यादव पूना मिश्रा अजीत कुमार मिश्रा श्रीनिवास कुमार बाकी जग्गू जग्गू रिंकू टिंकू।
0: बिल्कुल, सभी को सुनवा रहे हैं गीत आपकी पसंद का, नील कमल है फिल्म का नाम। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: केसरी सिंह राजपूत बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: तो हमारे यहाँ भी अब बारिश होने लगी है, आपके यहाँ मौसम कैसा है अभी?
1: हमारे इधर भी सर बारिश हो रही है।
0: और भोपाल तो जैसा आपने भी बताया था कि झीलों का शहर है और झीलों के लिए ये मौसम बड़ा मुफीद है ताकि उनमें वर्ष भर के लिए पानी संचित हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको?
1: कार्यक्रम तो सर जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर कार्यक्रम।
0: जी आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: आज सर एक गाना है आत्माराम मूवी का।
0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: हाँ ये इस फिल्म का बड़ा प्रसिद्ध, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि उनके गाने जुबान पर रहते हैं, तो बहुत मशहूर गीत है। पंडित विशेश्वर शर्मा ने इसके बोल लिखे थे, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।
1: जी सर, जी सर।
0: तो गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया।
1: मैं ज्यादा नहीं सर, दो तीन मित्रों को याद करना चाहूंगा, इजाजत हो तो।
0: जी बताएं।
1: गजराज लोधी जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं और तारून अंसारी जी।
0: जी सभी को, जी बिल्कुल सभी को सुनवाते हैं गीत आपकी पसंद पर। फिल्म है आत्माराम। नमस्कार।

0: नमस्ते
1: जी। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं।
0: नफीस जी, स्वागत है आपका। आप तो हमें लग रहा है स्थानीय श्रोताओं के भी कॉल बिल्कुल आसानी से लग जा रहे हैं, तो शिकायत का वो जो मौसम था वो बीत गया क्योंकि बारिश का मौसम आ गया। थोड़ा सा ये रखें कि आवाज ठीक रिकॉर्ड हो।
1: हमारे तरफ से तो मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, खुले में भी हमें और मोबाइल बढ़िया है।
0: हाँ, तब तो ठीक है, मोबाइल बढ़िया है तो इसकी मुबारकबाद कबूल फरमाएं आप। और बताएं जी, हम लोग तो ठीक ठाक हैं और रोज आप लोगों से प्रोग्राम में मुलाकात हो ही जाती है।
1: हाँ जी जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है प्रोग्राम
0: जी।
1: आपका रुक रुक जा रहा है, आवाज कम आ रही है और जो सॉन्ग की आवाज है वो बहुत तेज आ रही है, आपकी आवाज वो भी नहीं आ रही है। यही हो रहा था प्रोग्राम के लिए,
0: जबकि हम लोग अपने यहाँ से बिल्कुल बराबर देखते हैं कि दोनों आवाजें आए। बताएं आज किस गाने की फरमाइश है नफीस जी?
1: कोई अच्छा वो सुना दीजिएगा फिर, कुछ कहता है ये सावन।
0: जी जी, कुछ कहता है ये सावन, ये गीत आपको सुनना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आपने बताया, अब गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया नफीस जी, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर नमस्ते, मैं आशीष कुमार, ग्राम हरें, जिला जौनपुर।
0: क्या कहने आशीष जी, आपके तो मैसेजेज आ जाते हैं आसानी से, लेकिन फोन लगता है कि बड़ी मेहनत से लगता है।
1: जी सर, अभी हमारा फोन लगा था और थोड़ा इसमें अखबार लगाना होता है ना, फोन दो दो तीन तीन मिनट पे प्रयास करना होता है।
0: हाँ, तो कई बार आवाज नहीं आ रही है, ये भी हो रहा है। खासतौर से 52 पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इन दिनों की, शुरुआत में आवाज ऑन करने के बाद भी नहीं आती हम तक आप लोगों की।
1: जी सर, आपका हमें इंतजार रहता है, तुरंत मैं तैयार हो जाता हूँ लगाने के लिए फोन।
0: इनायत आप लोगों की है और हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि आप लोग इंतजार करते हैं और फोन इन कार्यक्रम में फोन करते हैं।
1: सर रेडियो तो हमेशा चलता है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेडियो का साथ और आप जैसे श्रोताओं का इससे लगाव काबिले तारीफ है।
1: पहले सर जब मैं इंटर में पढ़ता था
0: जी,
1: तो एग्जाम देने जाते हैं तो फिर रेडियो तब भी मैं सुनता था।
0: जी जी जी जी,
1: और मेरा बढ़िया भी नंबर आया, ये नहीं है कि रेडियो सुनने से।
0: जी बिल्कुल, हम सभी रेडियो सुनते हुए पढ़ते लिखते रहे हैं, बड़े हुए हैं, और ये कोई ऐसा नुकसान जैसी बात नहीं है, बल्कि और तालमेल बना रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते समय भी और गणित और विज्ञान जैसी चीजों के साथ ही पीछे से रेडियो बजता रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है।
1: और सर आरोग्य में
0: जी
1: स्किन रोग विशेषज्ञ सर नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत दिन से इंतजार है।
0: जी बिल्कुल, आप इंतजार करें और जल्द ही आपको त्वचा रोग के बारे में भी विशेषज्ञ से बात उस कार्यक्रम में हो जाएगी, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और किस गाने की फरमाइश आशीष जी आज है?
1: आज सर फिल्म का नाम रहेगा जानवीर, उसने का गाना है कि रिमझिम रिमझिम। और सर मैं एक दूसरा गाना आपके लिए गुनगुना दे रहा हूँ।
0: स्वागत है।

क्या कहने, अच्छा गाते हैं आप और कुमार सानू के आप फैन तो हैं ही। गीत आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते,
1: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से।
0: क्या कहने, स्वागत है डॉक्टर सितारे।
1: जी जी, एक बार शामिल हुआ था, बहुत दिन हुआ।
0: जी जी, बहुत दिन हुए, लेकिन सितारे फिर रोशन हो गए प्रोग्राम में फिर से मानसून के मौसम में। क्या हाल चाल है आपके, और आप डॉक्टर किस चीज के हैं?
1: जनरल फिजिशियन हूँ।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। और इस
1: लगती है,
0: अरे आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है और दिल की गहराई तक पहुंच रही है आपकी आवाज। तो मौसम कैसा है आपके यहाँ, बारिश आपके यहाँ भी हो रही होगी?
1: जी जी, दो तीन दिन से हो रही है।
0: जी जी, और ये बताएं कि आप चिकित्सक हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जब ये मौसम बारिश का शुरू हुआ है तो किस तरह की सावधानी आम आदमी को बरतनी चाहिए सेहत ठीक रखने के लिए?
1: रोज कपड़ा बदले, रोज नहाए, खाना खाए सुसुम, पानी पिए सुसुम, दारू खाना नहीं खाए, मरीज के इन्फेक्शन से, लोगों के इन्फेक्शन से बचे।
0: क्या कहने। अच्छा, भींगने के बारे में क्या ख्याल है? कई लोग बारिश का आनंद लेने के लिए भींगने लगते हैं।
1: मजबूरी से भींगे, नहाना तो पूरा से एक बार हट जाइए।
0: हाँ, ये है कि अगर बारिश है और उसमें

0: अब भींगना है तो कायदे से भींग करके उसको नहाने की तरह ही उसको मानिए। अब बता दें कौन सा गीत, रेडियो के शौकीन हैं आप, प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको।
1: जी जी,
0: आज कौन सा?
1: 40 बरस से सुन रहा हूँ, 40 बरस से।
0: बहुत बढ़िया, और कौन सा गीत आज सुनना है आपको?
1: फिर लैला मजनू का। उसने हाजिर है मोहब्बत सजा पाने को,
0: कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को।
1: जी, दो मित्र है मेरे।
0: जी बताए।
1: गजराज लोधी है, कुमार विजय पांडे है, बलवीर भाई है।
0: क्या कहने, मित्र तो आपने बड़े दूर दूर से बना के रखे हैं।
1: धर्मवीर भाई भी है।
0: वाह, ऐसी एक फिल्म भी आई थी, लगता उसी समय का नाम रखा हुआ है। तो जी, गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052 और एक और नंबर आप लिख लें 2221050 यानी 222-1050। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच रविवार को प्रसारित होता है। आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की थी।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर, कहीं भी कभी भी

0: आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशां। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ताहिरा सईद की गाई पारंपरिक रचनाएं सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी वाराणसी से कहकशां प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं ताहिरा सईद को। वक्त 11:12:14 और 14 सेकंड का।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2:00 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान।

0: और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मना ही जई बे बिनारे झूलनी, हम गवन मना ही जई।
0: कहकशां कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं ताहिरा सईद के स्वर में ये रचना।

0: कहकशां कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे ताहिरा सईद की गाई रचनाएं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर एक साथ उपलब्ध हैं। अब समय है सुगम संगीत का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658। बारह बजकर 30 मिनट और

मीराबाई की रचना अभी आप सुन रहे थे धनंजय कुशवाहा के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है आर्यन मिश्र का गायन। राग है मधुवंती, तबले पर संगति की है भोलानाथ मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आर्यन मिश्र का गायन। राग था मधुवंती, तबले पर संगति की भोलानाथ मिश्र ने। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि

0: आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। क्षेत्राधिकारी चकिया जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अमृता सिंह, पति का नाम

उमा शंकर सिंह, ये सवैया महलवार शहाबगंज चंदौली की निवासी हैं और 23 अक्टूबर 2025 से सवैया से लापता हैं। अमृता सिंह की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो क्षेत्राधिकारी चकिया जनपद चंदौली को सूचना दें। क्षेत्राधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली से प्राप्त एक सूचना के मुताबिक प्रभु नारायण, पिता का नाम हरिराम प्रजापति, ये हरिशंकरपुर मुगलसराय चंदौली के निवासी हैं और 21 अक्टूबर 2025 की रात्रि 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। प्रभु नारायण की आयु है 65 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद धोती। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो क्षेत्राधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार फिजा जायरा, पिता का नाम आबिद हुसैन, ये गोपालपुर मुगलसराय चंदौली की निवासी हैं और 18 अक्टूबर 2025 से गोपालपुर से लापता हैं। फिजा जायरा की आयु है 11 वर्ष, कद 3 फीट, रंग गोरा, एकहरा शरीर, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था चेकदार समीज और स्कूल ड्रेस। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद चंदौली को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात में 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह, प्रसारण समय रात्रि 8 बजे का। सीमा सिंह का काव्य पाठ प्रसारित होगा स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज फूल गोभी की खेती विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार राय से बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत की है दिनेश कुमार सिंह ने। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार, सूचना और फिल्म संगीत। नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर आज की प्रस्तुति सूची उपाध्याय की। लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर कलाकार होंगे मोहम्मद इस्लाम। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं और इनका इलाज विषय पर डॉक्टर सुनीता सुमन से बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने। इसके अलावा चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तीन असेंबली हलकों रामकोला हाटा और कुशीनगर के लिए

0: जाएगा।
1: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। दिन के 1:15।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 53 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगों की नमस्ते, और साथ में गौरी बहन तहू की नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, तहके भी नमस्ते, और कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोग के भी नमस्ते।
0: ये गौरी बहन,
1: हाँ दीदी।
0: देखो तो अब तो मौसम देखा कितना नॉर्मल हो गल बा, और तो और देखो जो उमस तो है हला, मगर जब जब उमसत है ना तब तब दहू बरखा भी कई देत हवन।
1: अरे मने कुल मिला के कह कि तनी दऊ इस समय मनसायल हवन, तो जितना गर्मी होत रहला और मनई गर्मी से तड़फड़ात रहला उसे बड़ी राहत मिलल।
0: ई होत रह के घर में से बाहर निकल वही ना करी, बाकी अब बाहर निकले में भी राहत मिलल हला। बाकी देखत हो ना जैसे जैसे मौसम चेंज होत बदलत हला ना, आ यही में देखा शीत गर्म भी हो जात हो, आ यही में देखा लइकन हम खेलत कूदत हूँ, खेल कूद के आवत हूँ घर में ना, तो वही ठंडा पानी पी लेत हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, और जैसे कि वो लोगों के ना शीत गर्म से बीमारी कौन कौन हो जात
1: एकदम
0: हला।
1: सही बात कहत हो। छोट लइका हम भाई बहरे जइया खेलिए कूदिए तो कीचड़ पानी लगी, और ऐसे ही जब मौसम में परिवर्तन होला, उतराव चढ़ाव होला, तो छोट छोट बच्चन पे बहुत जल्दी असर कर देवेला।
0: हाँ, आओ देखो तो ना बरसा जब बारिश होत होला ना, ओहो में देखा तो कितना भीगत हन बच्चन, यही में देखा फोड़िया फुंसी भी निकले का डर होला। अब बाकी जानत हो ना हम कल साझे के गईली घरे ना, तो हम देख रही ननका बीमार पड़ल रहल बा।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब ओके लेके हम अस्पताले गईली ना,
1: हाँ
0: तो वहाँ इतना लंबा लाइन लगल रहल ना कि पर्चो कटाए में बहुत समय लग गया रहा, हर
1: अच्छा।
0: जगह देखा था बस भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ लगल रहा।
1: बहुत सही बात कहत हो कि भीड़ का जोन बात कहत हो ना, तो तू कहीं घर से बहरे हाट बाजारे निकल जा, अस्पताले जा, चाहे रेलवे स्टेशन जा, बस स्टेशन जा, कहीं जेबू तो के उतने भीड़ देखे के मिल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो देखा हो एकर एगो मेन वजह है इतना भीड़ काहे होता, तो यही बदे जागरूक करे बदे लोगन के आज हवे विश्व जनसंख्या दिवस, जेवन जे की आज के दिने 11 जुलाई के मनावल जाला, और एकर उद्देश्य हम मनई के जागरूक कई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ई दिवस देखा मने के जागरूक करे के तहैय है, बाकी जौन तेजी से बढ़त आबादी हो ना,
1: हाँ
0: एकरे कारण जौन प्राकृतिक संसाधन पर पड़े वाला दबाव के भी कम करब हला।
1: हाँ तो यही बदे नहीं मनावल जाता, ही कुल तरह तरह की योजना मनावल जाता कि अपने पृथ्वी पे अपने समाज में जौन इतना कुल बढ़ल जाता और मनई के दिक्कत होता उससे बचल जा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अरे मन देखा अपने आप पे जौन जागरूक करे के होला, उमन देखा परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा के बढ़ावा दे भला।
1: एकदम सही बात कहलू है दीदी। देखा हो काहे से कि जब जनसंख्या बढ़ेला, परिवार का आबादी बढ़ेला ना, तो कहीं ना कहीं देखा मनई के आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर पड़
0: बिल्कुल
1: जावेला।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, और ओकरे बाद जेवन हा तेवन महतारी हैं उनके बहुत कुछ झेले के पड़ जाला। लोग जागरूक नाई हमें, शिक्षित नाई हमें, उनके घरे में देखा तो दू दू चार चार गो लइका हमें, न उनके खाए के व्यवस्था है, न पढ़े के व्यवस्था है, तब
0: बिल्कुल।
1: बहुत समस्या आवेला। एकरे बदे हम कहें ना कि सबके जागरूक होके के
0: ये
1: चाहिए।
0: तो बात तू एकदम देखा गौरी बहन सही करो, और देखा बहनी लोगन भी सुनत हैं, तो बहनी लोग भी सोचियन समझियन, आ ये जो जनसंख्या जो बढ़ल ना ऊपर भी ध्यान दियन। देखा अभी और तो हमने बात कही भी ले आई है, नीमन का गीत संगीत भी ले आए ली, एकरे पहले का नाम माने जरूरी सने सुन लेवल जाए।
1: सुन ले बल जाए।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
5: तो दीदी देखा हो, अभी हमने का बतियावत रही है जहाँ विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, तो जे में हर चीज का बात होता रहा, फिर ये होता रहा कि अगर महतारी पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। लेकिन जब कहीं ना कि घर में केहू गर्भवती होला तो कितना मन में आदमी के खुशी उत्साह रहेला कि घर में एगो नन्ना मेहमान आए वाला है, नन्ही नन्ही किलकारी गुजी, तो बड़ा नीक लगेला सुन के। तो यही के विषय बारे में हमने का बातचीत लेके आयल है जा कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या और इनका इलाज का है, जबकि बारे में बतौले हैं डॉक्टर सुनीता सुमन और बतौले हैं अपन बहिन शिखा श्रीवास्तव। तो बहिन लोग के सुने
6: सुनवा दो।
7: श्रोता बहिनी, जब कोनो भी स्त्री गर्भवती होले तो ई उकरे जीवन का सबसे सुखद समय होला, लेकिन ए सुखद समय के पूरे 9 महीना तक निभाह करके और सुंदर स्वस्थ शिशु के जन्म देवल बहुत आसान काम नहीं है। ओकरे बीच में बहुत बहुत समस्या भी होले, लेकिन ए समस्या से कैसे बचल जाए, एकर का इलाज है और ए दौरान हमन कौन बात पर ध्यान दे सकेला, इहे कुल विषय पर जानकारी देवे बदे आज हमन के बीच में आई हैं डॉक्टर सुनीता सुमन जी। ई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं चिकित्सक के पद पर, और आप लोगों के जानकारी दी है कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सा समस्या हो सकेला और ओकर इलाज कैसे कर जा सकेला। तो डॉक्टर बहनी, अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहे थे।
8: हाँ, धन्यवाद शिखा जी, और सभी को नमस्कार मेरा।
7: बहनी लोगन के ई बताई कि जब भी कौनो बहने गर्भवती होते हैं तो उनके कौन कौन बात पर ध्यान देवे के चाहिए कि उनका जो गर्भावस्था है वो सुचारू रूप से चले।
8: देखिए, गर्भावस्था जो है एक बहुत ही नाजुक अवस्था है, और इसमें बहुत सारे लोगों के घर परिवार के जो है वो सपने जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें घर वालों के साथ साथ गर्भिणी को अपने आप भी अपना ख्याल रखना चाहिए। उसे टाइम पर सोना है, उठना है, बैठना है, थोड़ा आराम करना है अपने लिए, टाइम से खाना है, पौष्टिक आहार खाना है, क्योंकि अब उसके लिए वो पौष्टिक आहार के साथ साथ उसके बच्चे के लिए भी उसकी जरूरत है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं अगर वो टाइम से अपना खाना नहीं खाएगी, पौष्टिक आहार नहीं लेगी, और जो है जो अपनी जो रूटीन वर्क है उसे सुचारू रूप से नहीं करेगी, तो उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे कि वो बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
7: अच्छा, तो जैसे मान ली कोनो महिला अगर गर्भवती हो था तो का तुरंत होके डॉक्टर के पास चल जाए के चाहिए या फिर कुछ समय लेके?
8: हाँ, ये जरूरी है कि अगर जैसे उसे ये लगता है कि उसको महीना नहीं आया है, नेक्स्ट मंथ में उसको महीना नहीं आया है, कुछ दिन ऊपर हो गए हैं और उसको लग रहा है कि ये गर्भावस्था हो सकती है, तो उसे डॉक्टर से, चिकित्सक से, महिला चिकित्सक से, जो कि ये जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उनसे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो शुरू में ही कराई जाती हैं और कुछ ऐसी जो पहले 3 माह हैं उसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से जो है परेशानी हो सकती है, बच्चे का गर्भपात भी या गर्भस्राव भी हो सकता है, या फिर क्या है कि जब वो महिला जो है उसे पहले 3 माह में क्या होता है कि जैसे कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं और कई बार क्या है कि उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है इस तरह का है, या बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, कई बार दर्द होता है, कब्ज होती है, तो

0: ऐसी कंडीशंस में अगर वो ध्यान नहीं रखेगी, जैसे कि जो उसे उल्टियां हो रही हैं, उसमें अगर पानी की कमी हो गई तो उसमें क्या होगा कि उसके बच्चे को भी वो हानिकर हो सकता है। तो इसके लिए उसे महिला चिकित्सक से जरूर, स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और क्या जांच करानी है क्या नहीं करानी है, क्योंकि खून पेशाब की जांच कुछ ऐसी होती है, पहले 3 माह का एक जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उससे ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक है शरीर में, और ठीक नहीं है तो उसे अगर खून की कमी है तो उसको ठीक किया जा सकता है।
1: अच्छा, मतलब शुरुआत से ही दवा चले लगे ले?
0: शुरुआत से बहुत दवा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ खान पान रहने सहने के लिए बहुत सारी जो है ध्यान रखने की जरूरत होती है, बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। शुरू में तो यही है कि फॉलिक एसिड मेनली चाहिए होता है, और वो जो फॉलिक एसिड है वो आप दवा के रूप में भी ले सकते हैं, या अंकुरित दाल है, अंकुरित चने हैं, या फिर फल हैं सारे, उसमें जो है वो फॉलिक एसिड मिल जाता है।
1: बिल्कुल सही आप बात बतावत हैं कि शुरुआत के 3 महीना में जोन कहलीन है कि बहुत ध्यान देवे की जरूरत है। अच्छा, शुरुआत के 3 महीना में जोन गर्भपात का समस्या आवेले, वो ज्यादा देखे के मिले ले, तो ओकर का कारण हो सकेला?
0: देखिए, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा उल्टियों का होना, या क्या होता है कि जब गर्भावस्था होती है तो शुरू के 3 महीने में जो है बदलाव आता है शरीर में, और वो बदलाव जो है स्त्री समझ नहीं पाती है, जो गर्भिणी स्त्री है तो वो समझ नहीं पाती है। तो वो जो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे उस समय पर हार्मोन्स जो होते हैं, अंदर की चीजें जो होती हैं, अंदर की क्रियाएं जो होती हैं, वो बदल रही होती हैं, और उसमें क्या है कि उसी टाइम पर इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही रहती है बच्चेदानी, ऊपर नहीं आती है, स्थिर नहीं होता है, तो अगर जरा भी चोट लगेगी, माना ऊंचे नीचे रास्तों पे जा रहे हैं, या फिर बहुत ऐसा खा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कब्ज हो गई है, लैट्रिन में समस्या हो रही है, या फिर इस तरह की परेशानी है कि कोई इन्फेक्शन है, या कोई और परेशानियां जैसे कि बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, तो उसमें जो है पानी की कमी हो जाती है शरीर में। अच्छा। तो ऐसी कंडीशंस में गर्भस्राव और गर्भपात का कारण हो सकता है।
1: अच्छा, कभी कभी यो देखल जाला डॉक्टर बहने कि बहुत हर चीज सामान्य चला था, और डॉक्टर बहनी भी बतावा थे इनकी हर चीज सामान्य है, ओकरे बाद भी बच्चा का धड़कन भी आ गए, रहत रहत रुक जाए ले, और गर्भपात का समस्या हो जाए ले, तो ऐसा काहे होला?
0: नहीं, देखिए ऐसा होता है कि कई बार ऐसी चीजें देखी गई हैं कि बहुत सारी स्त्रियों में जो है पहले से भी गर्भपात हुए रहते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारा जो बच्चीदानी होती है उसका मुंह खुला हुआ हो सकता है, या फिर साफ सफाई ना रखने से इन्फेक्शन हो सकता है, या क्या है कि बच्चीदानी कमजोर हो सकती है। कमजोर का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे हुए हैं, या फिर बहुत सारी पहले गर्भपात या गर्भस्राव हुआ है, उसकी वजह से कमजोरी आ सकती है, जो उसकी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है जो गर्भाशय की, तो उसकी वजह से जो है गर्भपात के कारण हो सकते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी गर्भपात गर्भस्राव हो सकता है, या खान पान, यानी कि वही मैंने फिर से बताया है कि जैसे कि अगर हम पौष्टिक खाना नहीं ले रहे हैं, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो खून की कमी हो सकती है, और दूसरी जो चीजें हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो सकती है, तो उसकी वजह से जो है गर्भपात की समस्या आ सकती है।
1: तो शुरुआत में तो जब जी मिचलाएला या उल्टी होला तो बहनी लोगन के कुछ खाए का ही मन ना करेला, और जब मन भी करेला तो बहुत चटर पटर खाए का मन करेला, तो इसलिए मैं का करे?
0: नहीं, ऐसा जब मैंने तो अधिकतर यही देखा है कि जो 3 माह जो शुरू के होते हैं उसमें खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि शरीर के जो बदलाव आ रहे होते हैं उनकी वजह से, जो हार्मोन्स का जो बदलाव है उसकी वजह से खाने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें उल्टियां हो सकती हैं या उल्टी होने का मन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में लिक्विड डाइट यानी कि तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए। अगर उसे दूध अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो उसमें आप मुनक्का डाल के लीजिए, उससे कब्ज की समस्या भी कम जो है वो खत्म होगी, और उससे जो है खून भी बढ़ेगा। मुनक्का डालिए, छुआरा डालिए, या दूध में आप कोई भी पाउडर मिला के, प्रोटीन पाउडर मिला के ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप खिचड़ी है पतली पतली, दलिया है, लिक्विड डाइट जितनी भी है, नारियल पानी है, या फिर सब्जियों का सूप है, जो अच्छा लगे वो लीजिए, क्योंकि ये गर्भिणी गर्भावस्था जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य अवस्था है
1: जी।
0: इसमें बस ये है कि आपके शरीर में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से आपका जो है अरुचि हो सकती है, तो जो भी अच्छा लगे आप खा सकते हैं, जो अच्छा लगे ज्यादा से

0: ज्यादा पानी इसलिए पीने के लिए कह रहे हैं, दूध इसलिए कह रहे हैं, मक्खन घी इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारा उल्टी की वजह से जो कमी आई है शरीर में वो पूरी हो सके, जो हमारी पानी की कमी है, अगर हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा माना पानी की कमी से, तो उसमें बच्चे के भी सूखने के चांसेज होते हैं।
1: अच्छा
0: कहने का मतलब है कि वहां पर गर्भपात और गर्भस्राव होने का चांस हो सकता है, और जो महिला है उसको भी परेशानी हो सकती है पानी की कमी से शरीर में।
1: तो आपके पास तो बहुत तरह का मरीज आवत हुई है, तो कौन कौन समस्या देखे कि मिले ले ए दौरान आपके?
0: ये तो बहुत सारी समस्याएं जो आम समस्याएं देखने को मिलती हैं, वैसे तो ये गर्भावस्था की सबकी ही सामान्य अवस्थाएं हैं कि सामान्य थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं। तो थकान हो सकती है, क्योंकि जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं उनकी वजह से जो है वो थकान हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से चक्कर आ सकता है। तो ये बदलाव के कारण जो है, तो बस यही इसका एक उपाय यही होता है कि पहले 3 माह में तो पानी ज्यादा से ज्यादा लें, जितने भी द्रव पदार्थ हैं तरल पदार्थ हैं वो ज्यादा से ज्यादा लें। और इसमें अभी जैसे सूजी की खीर है, चावल की खीर है, दलिया है, सूप है, ये सारी चीजें लें।
1: मतलब पूरे 9 महीना तक उनके अपने खाए पिए पर ध्यान देवे के
0: हाँ,
1: है
0: ये तो
1: पूरी
0: जरूरी
1: तरह से।
0: है। 5वें 6वें महीने में जैसे कि बच्चे का बढ़ना है, ग्रोथ हो रही है, तो उसे प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन डाइट जो लेना है, अगर वो नॉन वेज खाते हैं तो उसमें अंडे हैं और थोड़ा सा जो है नॉन वेज भी खा सकते हैं। अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, तो उसमें पनीर है, छेना है और राजमा है, सभी दालें हैं, तो जितना भी इस तरह का पौष्टिक आहार है, और सारे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मुनक्का है, पुराना गुड़ जो होता है बहुत अच्छा माना गया है, वो खून को बढ़ाता है, कैल्शियम भी मिलता है इन सब चीजों से। तो मेन जो इस टाइम पर जरूरत है वो आयरन और कैल्शियम की जो है वो गर्भावस्था में जरूरत होती है। तो दूध है, जैसे कि सेब है, अंगूर है, संतरा है, विटामिन सी क्या करेगा कि वो आयरन को बढ़ाएगा। तो इस तरह के सारे पौष्टिक आहार को लिया जा सकता।
1: डॉक्टर बहनी, एक प्रश्न और मन में आवा था, बहनी लोगन भी सोचे लिन, असमंजस में पड़ल रहलिन कि ए दौरान हमन के का करे के चाहिए, का ना करे के चाहिए। खाए पिए में भी ई होला कि कौन चीज खाई और कौन चीज न खाई, तो एक ही तनी फरिया के बताई।
0: देखिए, ये जो करना चाहिए या खाना चाहिए वो तो मैं अभी बता चुकी हूँ, लेकिन जो नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो ऐसी चीजें ना खाएं जो सुपाच्य ना हो, जो अच्छे से ना पच पाए। जैसे कि कटहल है, कटहल बिल्कुल मना किया गया है, या सूरण है, ये सब, या लहसुन है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, या जो देर से पचने वाली चीजें हैं, जो कब्ज कर सकती हैं, जिनमें जो है कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, तो ऐसी चीजें ना खाएं।
1: बथुआ
0: लेकिन
1: के
0: ऊंचे नीचे रास्ते पर ना जाएं। बथुआ खा सकते हैं, देखिए मनाही कुछ नहीं है, मैंने अभी कहा कि ये एक सामान्य अवस्था है, मनाही कुछ नहीं है। अगर बहुत मन है तो वो भी नहीं दबाना है इस समय पर, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाना है
1: और
0: जो नुकसान
1: अनानास और
0: करे।
1: पपीता तो डॉक्टर
0: अनानास
1: बिल्कुल
0: पपीता तो हाँ मना इसीलिए किया जाता है क्योंकि उससे कई बार लूज मोशन लग सकते हैं, उसकी वजह से भी पानी की कमी हो जाती है, और कई बार जो है अगर पानी की कमी होगी तो उसकी वजह से बच्चे में नुकसान हो सकता है, इसलिए ये सारी चीजें मना की जाती हैं। और जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि ऊंचे नीचे रास्तों पर नहीं जाना है, सवारी पर नहीं जाना है, बहुत ऊंचे नीचे रास्तों पर जा रहे हैं तो उससे भी गर्भपात की समस्या या गर्भस्राव की समस्या आती है, या पेट में दर्द हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और ऊंचे नीचे बिस्तर पर भी नहीं सोना है। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में अपना टिफिन लेके जाएं, हल्का खाना लेके जाएं, सुपाच्य खाना लेके जाएं, और रेस्ट जरूर करें 2 घंटे दिन में।
1: अच्छा, एक बात और मन में आवत है पूछ ले आपसे कि
0: हाँ,
1: अगर गर्भावस्था के दौरान कोनो गर्भवती के कोनो बीमारी हो जाता, समस्या हो जाता कि मधुमेह हो गई है, चाहे क्षय रोग हो गई है या और कोनो समस्या हो गई है, तो ओ दौरान में का वो दवाई का सेवन करे ले इलाज होकर संभव हो?
0: हाँ बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा जो गर्भावस्था में है वो शुगर थोड़ा सा तो बढ़ता ही है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसे मधुमेह की समस्या हो रही है, तो वो जरूर चिकित्सक से सलाह लें, उनके पास जाकर दिखाएं, और जो भी वो दवा उनके लिए सलाह करते हैं, देते हैं, उसको नियमित रूप से खाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई जो मरीज होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो गर्भिणी स्त्रियां होती हैं, उनको जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की समस्या हो सकती है, मधुमेह की समस्या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है उसको दवा लेनी ही लेनी है, नियमित रूप से लेनी है। कई बार क्या है कि घर की

0: ऐसी स्थितियां हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ने से जो है वो उनको चक्कर आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा रक्तचाप बढ़ गया तो उससे पहले ही जाकर अगर जरा सा भी ऐसा लग रहा है तो घर वालों को चाहिए कि, कई बार क्या है कि औरत नहीं निकल पाती है, जो स्त्री होती है वो नहीं निकल पाती है अपने घर से, तो ये जो है वो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनका फर्ज बनता है कि वो लेकर जाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास अगर कोई परेशानी है तो उसकी उचित सलाह लेते हुए उसका इलाज करवाएं।
1: बहुत नीक नीक आप जानकारी देते हैं। चलत चलत बहनी लोगन के का सुझाव दे?
0: मैं यही कहूंगी कि गर्भावस्था जो एक बड़ी नाजुक अवस्था है लेकिन इसके साथ बहुत सारे सपने जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए अपने खान पान पे। अगर आप थोड़ी सी भी परेशानी है तो अपना म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि गर्भ संस्कार भी जो है वो महिलाओं को इस टाइम पे बताया गया है, तो उसके लिए जो है अपने बच्चे को अपने को शांत रखने के लिए ये सारी चीजें ये उपाय, हल्का व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार के साथ साथ जो है अपने परिवार के साथ में मिलजुल कर रहिए।
1: बहुत नीक आप जानकारी देलिन बहनी लोगन के। डॉक्टर सुनीता सुमन जी, आप हमारे कार्यक्रम में लेन और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन समस्या बहनी लोगन के हो सकेले और उनसे कैसे निपटल जा सकेला ये विषय में इतना नीक जानकारी देलिन, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गौरी बहन,
3: हाँ दीदी,
2: देखाओ कितना फरिया के एकदम समझा के बतेलिन है गर्भावस्था के दौरान होए वाली समस्या और एक का इलाज होला। डॉक्टर सुनीता सुमन से बतियात लेन है शिखा श्रीवास्तव बहनी, तो देखा बातचीत तो हो गल। देखा बहन लोग हम सोचत हुई है ना कि अभी बहन लोगन का सुनवाई है।
3: एकदम सही बात कहत हो दीदी, मैंने बहन लोग इंतजार करत हुई है कि खाली ये बतियाबे करी कि कुछ मन मनसाइन भी करी हाँ, तो बहन लोग के काहे नई विदुषी शारदा सिन्हा की आवाज में ये गीत सुनवाई दिया जाए।
2: हाँ, सुनवाई दा।

0: देखा हो गीत गवनी ती हो गए कितना निक का गीत सुनवैलू है कि बहनी लोगन भी देखा खुश हो गई लेन है
1: एकदम सही बात कहत हो दीदी देखो हो गीत गवनई तो हो गई सब चीज हो गई लेकिन जौन हमनी के बतियात रहनी है जाना कि दऊ बरसत हुआ आ बड़ा मेहरबान भइल हुआ मन मनसाइन होत ह नीक लगत ह लेकिन देखा हो जब मौसम बदले ला ना तो एक सीधा असर मनई के स्वास्थ्य पे भी पड़े
0: बिल्कुल बिल्कुल मनई के स्वास्थ्य पर पड़ा ला जैसे कि देखा बच्चन हैं खेलत कूदत हैं फिर वही गर्मैला एहन पानी पी ली हैं अब पंखा चला लेवत हैं पंखा जब बंद हो जात होला तो गर्मी लगे लगत हो बाकी जब पंखा चलावन थोड़ा सा ठंडा लगे लगत होला तो यही में देखा शीत गर्म हो जात होला।
1: हाँ कुल मिला के कहे के मतलब ये है कि खाली लैकने के ना हो जब देखा मौसम में उतराव चढ़ाव होला तो घर का बूढ़ पुरनिया चाहे जे लैका सियान सबके स्वास्थ्य पे असर पड़ेला तो इसे बचे के चाही और देखा बरसात का समय है ना तो इमे साफ सफाई का ध्यान रखल भी बहुत जरूरी हो जाला। कटा फटा फल फूल ना खाए जितना हो सके उतना ताजा खाना खाएं असिया बसिया खाना ये टाइम का वो टाइम रख के नहीं खाए के चाहे इसे काहे से कि इसे लैका सियान सबका तबियत खराब हो जाई। और दीदी कहीं ना कि बतियावल जाई तो बतियावते रही जाई जाई हो और देखा जैसे समय से आवे नहीं जाना वैसे ही समय से हमनी के जाए के भी पड़ेला तो चला चली जा और कहीं जा नमस्ते, नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं मोहम्मद इस्लाम। पहले सुनिए इनकी गाई एक लचारी।

इस दादरा के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे मोहम्मद इस्लाम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव सोटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज

0: विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत

0: क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरि में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में इस्तेमाल सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में।

0: नॉर्मल एक्टिविटी है, आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी। और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे इस संगीतमय सफर गीतांजलि कार्यक्रम का मुख्य विषय है हृदय यानी दिल। दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितनी अद्भुत रचना है। मस्तिष्क चाहे जितने तर्क गढ़ ले, जीवन को कितनी ही व्यवहारिक कसौटियों पर क्यों ना कसे, लेकिन जब बात भावनाओं की आती है ना, तो ये दिल अपने ही सहज और निश्चल वेग से बहने लगता है। इस हृदय में जब यादों के चिराग जलते हैं तो एकांत भी जैसे सुरम्य हो जाता है। इसी भाव को शब्दों में पिरोया है गुलजार साहब ने और अपनी मखमली आवाज से सजाया है मुकेश ने। आइए इस दिल की गहराई को महसूस करते हैं गीतांजलि कार्यक्रम के इस पहले गीत से।

श्रोताओं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये गीत सचमुच में संध्या की इस बेला में हृदय जब अतीत के झरोखों को खोलता है तो यादों की एक ठंडी हवा पूरे अस्तित्व को सराबोर कर देती है। कहते हैं कि जब दिल किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब उसमें सच्ची प्रीत का अंकुर फूटता है, तो उसे पूरी दुनिया में प्रकृति के कण कण में केवल अपने प्रिय का ही अक्स दिखाई देता है। ये समर्पण, ये निष्कपट प्रेम ही तो जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। इस पावन और निश्चल प्रेम को जब किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज दी तो वो सीधे हमारे अंतर मन को छू गई, और ये गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आइए सुनते हैं किशोर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये हृदय सदैव इतना गंभीर या शांत भी नहीं रहता, इसकी अपनी एक अबोध चंचलता भी है। कभी कभी ये किसी छोटे बालक की तरह हट कर बैठता है, तो कभी अपनी ही मधुर कल्पनाओं में खोकर संपूर्ण संसार से बेखबर हो जाता है। दिमाग इसे लाख समझाए मगर ये अपनी सहज मासूमियत को नहीं छोड़ता। दिल के इसी चंचल और आनंदित रूप को रेखांकित करता हमारा अगला गीत है। निश्चित ही आपके चेहरे पर ये गीत एक मुस्कान बिखेर देगा। आइए सुनते हैं, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा।

दोस्तों, हृदय की चंचलता के इस मधुर प्रसंग के बाद अब बात करते हैं उस स्थिति की जब यही दिल किसी के विरह में, किसी की प्रतीक्षा में थोड़ा व्याकुल हो उठता है। प्रेम की पूर्णता केवल मिलन में नहीं बल्कि उस तड़प में भी है जो दो हृदयों को आत्मिक रूप से एक कर देती है। जब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है तब केवल भावनाएं बोलती हैं। आइए संगीत के स्वर्णिम युग के एक ऐसे ही भावपूर्ण गीत से जुड़ते हैं जो विरह की इस सुंदर वेदना को स्वर देता है।

वास्तव में दोस्तों, हमारा हृदय ही हमारे संपूर्ण अस्तित्व का केंद्र है। बुद्धि हमें राह दिखा सकती है, हमें सही और गलत का अंतर समझा सकती है, लेकिन जीवन में संवेदनाओं के रंग, प्रेम की मिठास और अपनों के लिए त्याग की भावना तो केवल सहृदय होने से ही आती है। चलते चलते आकाशवाणी के माध्यम से बस यही संदेश आप सभी श्रोताओं को देना चाहती हूँ कि इस मशीनी युग में अपने भीतर से उस कोमल, संवेदनशील और धड़कते हुए दिल को हमेशा जीवित रखिएगा। इसमें नफरत,

ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान मत छोड़िए। इसे केवल करुणा, परोपकार और असीम प्रेम से पूरित रखिए, क्योंकि एक संवेदनशील हृदय ही एक सुंदर, शालीन और स्वस्थ समाज की सुदृढ़ नींव बनता है। और दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां संकेत कर रही हैं कि आज के इस सफर को यहीं पर विराम दिया जाए। गीतांजलि के आज के इस अंक में बस इतना ही। आशा है दिल के विभिन्न रंगों से सजी ये कड़ियां आपके अंतर मन को छूने में सफल रही होंगी। छोड़े जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत गीत के साथ। हम फिर मिलेंगे गीतांजलि कार्यक्रम में कुछ और अच्छे विषयों के साथ और उनसे जुड़े गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: फुर्सत के रात दिन बैठे रहे।
1: कार्यक्रम गीतांजलि अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति शुचि उपाध्याय की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 किलोमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजे हैं आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा के अंत में सुने नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: अपने प्यारे प्यारे साथियों, जय हिंद। जय हिंद सुधा दीदी।
1: जय हिंद सुरेखा दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ।
1: और बच्चों, अब तो आपके स्कूल भी खुल चुके हैं और कोचिंग क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, है ना? तो आपको हर काम समय से ही करना पड़ता है। अरे भाई, समय का मतलब अनुशासन से भी तो हो सकता है कि हर काम हम अनुशासन से ही करें। जैसे आप एकदम साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं और जब आप स्कूल से वापस आते हैं तो क्या आप उसी यूनिफॉर्म को इधर उधर उतार कर रख देते हैं कि मम्मी रखेगी? नहीं बच्चों, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आप जब स्कूल से आते हैं तो अपना यूनिफॉर्म, अपने शूज, अपने बैग्स, अपनी बुक्स वगैरह सब जगह पे रखनी चाहिए, जिससे दूसरे दिन आपको वो चीज समय पर ही मिल जाए।
0: और ये तो है अनुशासन की बात, क्योंकि जब आप घर पे आते हैं तो सारी चीजों को अच्छे से रखिए और इसके साथ ही साथ अपना होमवर्क भी डेली का डेली कर लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना? ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा काम अगर छोड़ते जाएंगे तो एक साथ बहुत ज्यादा काम हो जाएगा ना, वो हो नहीं पाएगा। और इसके साथ ही साथ दो तीन बातों का ख्याल रखना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि इसी से ना, जिसे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बचपन से ही पता होने लगती है कि ये बच्चा किस तरह का है, ये बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये कोई बच्चा बात मानता है या नहीं मानता है। तो क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका नेचर अलग ही होगा, सब एक तरह के नहीं होंगे, लेकिन जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो सब बच्चों के प्रति एक ही तरीके का होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो उसमें आप अपने आप को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, नहीं करना एक अलग बात है, से नो, ठीक है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप अगर नो कह रहे हैं तो वो किस

0: लहजे में कह रहे हैं, है ना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो किसी ने बात कह दी तो आप उसे एग्री ही कर जाइए, या आप उनकी बात अगर मानने की इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है या तबीयत नहीं ठीक है, तो आप उनको बताइए, अपनी बात बताइए, लेकिन आप उसे किस तरीके से बता रहे हैं ये भी एक अनुशासन का भाग है। अगर आप किसी भी चीज को बहुत तेज आवाज में बात करेंगे तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा,
1: नहीं।
0: यहाँ तक कि आपके बराबर के जो दोस्त हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और धीरे धीरे वो दोस्त भी बहुत दूर हो जाएंगे कि ये तो ऐसे ही हर समय बात करता है, तेज आवाज में बात करता है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, बात अगर अनुशासन की हो तो अनुशासन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपको अगर एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे खेलना नहीं चाहते या एंटरटेनमेंट नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और समय से काम करना ही बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, इसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बच्चों को चाहिए। दीदी
1: देखिए ना, अपने प्यारे से बच्चों को, छोटे बच्चों को प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल, तो चलिए बच्चों गीत सुनवाते हैं।

0: गीत सुन के तो बहुत ही आनंद आ गया दीदी। अब देखिए बारिश का मौसम भी है ना, और ये आसमान में जो कलर होते हैं रंग बिरंगे, ये इसी मौसम में तो दिखाई देते हैं, है ना।
1: आप रेनबो की बात कर रही
0: बिल्कुल रेनबो की बात कर रही हूँ दीदी। और आज हमारी जो रोचक दीदी हैं, उनके पिटारे में भी कुछ इसी तरह की जानकारी दी गई है।
2: बच्चों नमस्ते, आ गई है रोचक दीदी आज फिर लेकर जानकारियों से भरा अपना

0: पिटारा। बच्चों, आज कौन सी जानकारी है रोचक दीदी के पिटारे में? अरे, आप देख सकते तो देखते, ये क्या, मेरे पिटारी से तो रंग निकल रहे हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी भी है। भाई वाह, सात रंग! अरे, ये तो इंद्रधनुष के रंग हो गए बच्चों, रेनबो। दिखा आपको? नहीं दिखा? भाई दिखेगा कैसे? इंद्रधनुष बनने के लिए जरूरी होता है सूर्य प्रकाश और वायुमंडल में उपलब्ध पानी की बूंदें। तो इंद्रधनुष देखना है तो बाहर निकलिए। रिमझिम जब बरसात होती है बच्चों, और साथ में सूरज चाचा के प्रकाश की किरणें जब उन बूंदों पर पड़ती हैं, तभी तो बनता है रंग बिरंगा इंद्रधनुष। रोचक बात बताऊं बच्चों, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल में मौजूद पानी की बूंदों के संपर्क में आता है, तब एक खास तरह की ऑप्टिकल प्रक्रिया के कारण रेनबो बनता है, और ये प्रक्रिया होती है अपवर्तन और परावर्तन की। इस प्रक्रिया के कारण सूरज की किरणें जब बारिश की बूंदों में प्रवेश करती हैं, तब एक खास कोण पर मुड़ जाती हैं, और प्रकाश की किरणें मुड़ने के बाद बूंदों के अंदर की सतह से टकराती हैं और फिर से परावर्तित होती हैं। फिर जब ये परावर्तित प्रकाश बूंदों से बाहर निकलता है, तो फिर से अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश और बिखर जाता है और बिखर के इन सात रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस तरह बनता है सात रंगों वाला रंग बिरंगा इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो। है ना मजेदार? तो भाई आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? जब धूप हो और साथ में बरखा की बूंदें भी हो, तो थोड़ा बाहर निकलिए, आकाश की ओर देखिए। हो सकता है आपको इंद्रधनुष के सात रंग दिख जाएं। फिलहाल रोचक दीदी अपने पिटारे को, या यूं कहिए आज जानकारी से भरे इन रंगों को यही समेटेगी। अगले हफ्ते फिर आऊंगी आपके लिए लेकर बड़ी सी पोटली, और उसमें होगी नेहरू जानकारियां। फिलहाल रोचक दीदी कहेगी बाय बाय।
1: भीवा दीदी, अब रोचक दीदी ने तो बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारी दे दी, मुझे भी नहीं पता था। आज पता हो
2: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये तो बात थी रोचक दीदी की, लेकिन अभी हमारे बीच में है समृद्धि और वैभवी। वो भी हमें और हमारे नन्हे प्यारे साथियों को कुछ सुनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल, वो सोच ही रही हैं।
2: तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं।
3: मेरा नाम वैभवी शुक्ला है और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आपको मैं अपनी पाठ पुस्तक की एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छी आदतें। एक छोटा खरगोश हरे भरे जंगल में रहता था। एक दिन उसने एक बड़ा लाल सेब मिला। खरगोश बहुत खुश हुआ। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सबने मिलजुल के सेब खाया। सभी ने खरगोश को धन्यवाद किया। फिर सभी ने मिलजुल के खेला कूदा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल के बांट के खाना चाहिए।
4: दीदी, मेरा नाम समृद्धि शुक्ला है और मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं आपको अपने पाठ पुस्तक की कविता सुनाती हूँ। विनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम सब बच्चे हैं नादान, विद्या का दे दो वरदान। सदा सत्य के राह चले, बाधाओं से कभी ना डरे। सही समय पर काम करें, जग में ऊंचा नाम करें। धन्यवाद।
1: अरे वाह समृद्धि और वैभवी, आपने तो बहुत ही प्यारी कविता और कहानी सुनाई है। और वाकई जो हमें कुछ भी अगर हमें खाना चाहिए ना, तो मिल बांट के ही खाना चाहिए। और भाई मिल बांट के तो खाना चाहिए, और लेकिन कुछ चीजें बचा के भी रखनी चाहिए, है ना दीदी?
2: बिल्कुल सही है।

0: क्योंकि अगर बचपन से ही किसी आदत को डेवलप किया जाए, उसको अपनी आदत में डाल लिया जाए, तो वो आगे चल के भी मुश्किल नहीं होती है। जैसे एक आपकी आदत है बच्चों, थोड़ा कभी कभी बहुत से बच्चे ना खर्चीले होते हैं, तो खर्च ना करके अगर थोड़ी सी बचत की आदत डाल लीजिए कि जो है उतने में ही मुझे खाना भी है और उतने में ही मुझे पेंसिल और बाकी आपके जो अलग से खर्चे हैं, कभी बच्चों का आइसक्रीम खाने का मन होता है, कभी कुछ खाने का मन होता है, तो हमेशा अपनी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करें। कभी ये
1: बिल्कुल
0: भी कोशिश करें कि कोई चीज़, जो भी आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं माता पिता से या दूसरे लोगों से, तो कुछ पैसों को बचा कर रख लिया जाए, है ना।
1: गुल्लक में डाल दिया जाए। और फिर वो जो एक दिन आता है जब गुल्लक भर जाता है, उसको फोड़ने का जो एक आनंद आता है ना, कि भाई कितना होगा इसमें, है ना, कितना मैंने बचत किया है, तो वाकई वो बहुत
0: वो खुशी ही एक अलग होती है ना।
1: बिल्कुल
0: तो अब चलिए इसी खुशी के साथ हमें भी तो विदा लेना है अपने बच्चों से।
1: तो बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपनी
0: सुरेखा दीदी को
1: और सुखदा दीदी को
0: दीजिए इजाजत।
1: जय
0: जय
1: हिंद
0: हिंद
1: बच्चों।
0: बच्चों।

अभी नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुने युवा साथियों का कार्यक्रम यौवाणी।

0: जब हर जीवन को मिले समान अवसर, जब हर परिवार हो जागरूक और जिम्मेदार, तभी बनेगा एक संतुलित और समृद्ध संसार।
1: और शाम के सुनहरे रंग और ताजगी भरी हवाओं और बारिश की चंद बूंदों के साथ आप सबका स्वागत करते हैं दोस्तों हमारी आज के युववाणी कार्यक्रम में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी तैयबा मारूफ
0: और मैं हूं ऐश्वर्या, और आप सभी का करते हैं प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह से भरे होंगे, और इसी उत्साह के साथ एक खूबसूरत सफर की शुरुआत भी करते हैं कुछ नई जानकारियों, रोचक बातों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। लेकिन उससे पहले करते हैं एक सुरमई शुरुआत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दोस्तों हम चर्चा करेंगे एक

0: ऐसे विषय पर जो केवल किसी देश या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: मेरे दोस्तों, हर वर्ष आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: बिल्कुल, ये दिन हमें सोचने का अवसर देता है कि किस प्रकार हमें बढ़ती जनसंख्या की

0: प्रकार हमें बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ संसाधनों, पर्यावरण और मानव विकास के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं?
1: मेरे दोस्तों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवा और सक्षम जनसंख्या हमारे देश के विकास, नवाचार और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में तेज गति से होने वाली लगती है तो अनेक समस्याएं सामने आने लगती हैं। भोजन, पेयजल, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पर दबाव पड़ने लगता है।
1: तो मेरे दोस्तों, आज आवश्यकता है, आज ये जरूरत है कि हम जनसंख्या को केवल एक समस्या के रूप में ना देखें, बल्कि इसे सही दिशा देने का प्रयास करें। एक शिक्षित, स्वस्थ और कुशल जनसंख्या किसी भी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसके लिए हम में से हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, जनसंख्या संतुलन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती हैं तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं।
1: बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और समान अवसर प्रदान करना एक मजबूत और विकसित समाज की नींव रखता है। दोस्तों,
0: बिल्कुल दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर धरती छोड़ना हम सभी का कर्तव्य है।
1: तो आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है दोस्तों। परिवार नियोजन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शिक्षा का प्रसार और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं।
0: तो आइए दोस्तों, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम यह निश्चय करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण में अपना योगदान देंगे जहां जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि विकास और प्रगति के शक्ति बने,
1: जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और हर परिवार को बेहतर जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो।
0: जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति सही दिशा और संवेदनशील सोच के साथ आगे बढ़ती है तभी समाज का वास्तविक विकास संभव होता है। समाज की इन्हीं बदलती परिस्थितियों और मानवीय भावनाओं को अपने साहित्य में आसान देने वाले प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करना हम सभी के लिए गर्व का विषय है।
1: भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के महान लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक थे दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 11 जुलाई यानी आज के दिन मनाई जाती है। इस दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहित्यिक योगदान को याद करते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था।
0: उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। वे सरल, संवेदनशील और समाज की शिक्षा को समझने वाले लेखक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आम लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं, संघर्षों और मानवीय मूल्यों को बहुत ही सरल से और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
1: भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध रचना दोस्तों तमस है। ये उपन्यास भारत के विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके दुखद प्रभावों को दर्शाता है। इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
0: तमस पर एक प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया गया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और इसके अलावा उन्होंने बसंती, मायादास की माड़ी, झरोखों जैसे कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक नाटक, कहानियां और अनुवाद भी किए जो आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है।
1: भीष्म साहनी का मानना था दोस्तों कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना और लोगों में जागरूकता लाना भी है। उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज हुआ करती थी, इसलिए हर आयु के लोग उनकी रचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं।
0: उनके लेखन में मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा और सामाजिक न्याय का संदेश मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, ईमानदारी और मेहनत को हमेशा महत्व दिया।
1: 11 जुलाई 2003 को भीष्म साहनी का निधन हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों, उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं और लोगों को प्रेरणा देती हैं और देती रहेंगी। उनकी पुण्यतिथि हमें यह संदेश देती है कि हमें समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव और मानवता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
0: एक महान साहित्यकार के रूप में भीष्म साहनी का योगदान सदैव किया जाएगा। उनके जीवन और साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनसे सच्चाई, संवेदनशीलता तथा समाज के प्रति

0: जिम्मेदारियों को निभाने की सीख मिलती है।
1: और मेरे दोस्तों, जो बारिश की बूंदें होती है ना, वो केवल पानी की बूंदें नहीं होती। जैसा कि अभी हम कुछ गीत अपने बजा रहे थे, तो ये ना धरती की एक जीवन का संदेश कह सकते हैं, वो लेकर आती है धरती के लिए, हमारी जमीन के लिए, इस भूमि के लिए। इसके बिना हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनका जीवन भला कैसे संभव होगा।
0: जैसे ही पहली बारिश होती है, सूखी धरती से उठने वाली सौंधी सौंधी खुशबू मन को आनंद से भर देती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ और तालाब पानी से भर जाते हैं और वातावरण शुद्ध और सुहावना हो जाता है।
1: और जैसा कहा जाता है मेरे दोस्तों, कि हमारा जो देश भारत है, वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ तो लाखों किसान जो होते हैं, बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। समय पर होने वाली अच्छी बारिश फसलों की पैदावार बढ़ाती है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, बारिश केवल खेती के लिए ही नहीं, बल्कि भूजल स्तर बढ़ाना, नदियों को भरना और जलाशयों में पानी संग्रह करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पानी पूरे वर्ष हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: लेकिन मेरे दोस्तों, हर चीज की तरह बारिश का भी दूसरा पहलू है। यदि बहुत अधिक बारिश हो जाए तो बाढ़, जल भराव और कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। और वहीं अगर बारिश कम होती है तो सूखे जैसी स्थिति बन जाती है।
0: इसीलिए हमें वर्षों के जल का सही उपयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन अपनाकर हम भविष्य के लिए पानी बचा सकते हैं। जल है तो कल है, केवल एक नारा नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: क्योंकि बारिश के मौसम में हमें दोस्तों अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। जैसे साफ पानी पीना है, स्वच्छ भोजन करना है और आसपास सफाई रखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें।
0: बिल्कुल, बारिश हमें ये भी सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। अगर हम पेड़ लगाएंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे दोस्तों, तभी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी।
1: तो आइए इसी बात पर संकल्प ले लें कि पानी की एक-एक बूंद का हम महत्व समझेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में योगदान भी देंगे, क्योंकि बारिश प्रकृति का सबसे सुंदर बेहतरीन उपहार होती है। तो आइए इसका सम्मान करें, जल बचाएं और पर्यावरण की रक्षा करें, और एक गीत भी सुनते चलें।
0: बिल्कुल।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: तो मेरे दोस्तों, बादल, बूंद और बारिश के बीच क्यों ना आज के स्पेशल सेगमेंट का भी रुख किया जाए। तभी तो इस माहौल में चार चांद लगेगा जब हम अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि हमने यूथ जंक्शन में अपने दोस्तों से क्या बातचीत की।
5: हेलो, यूथ जंक्शन में आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं।
6: जी, मेरा नाम श्रेया मिश्रा है, मैं बनारस से बात कर रही हूँ।
5: अच्छा, आप सिग्रा से बात कर रही हैं। श्रेया, आप इस समय क्या कर रही हैं?
6: मैं इस समय बीटेक कर रही हूँ।
5: अच्छा, आप बीटेक कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और श्रेया, जैसा कि आपको पता है कि बारिश का मौसम तो चल ही रहा है ना, आपकी कुछ बचपन की बारिश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी याद जो आप कभी अपनी जिंदगी में भूल ही ना पाए हो?
6: एक नहीं, ऐसी अनेक यादें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये चीज एक्सप्रेस करूंगी आपको यहाँ पे। कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि बारिश की बूंदों की आवाज, मिट्टी की अच्छी सी खुशबू, वो एक अलग नॉस्टैल्जिया, एक अलग सी याद जनरेट करती है हमारे मन में। कुछ लोगों के लिए वो बहुत सुकून भरा पल होता है, हालांकि बच्चों के लिए वो मस्ती का एक साधन होता है। जैसे जब मैं अपने बचपन में थी, उस टाइम पे मम्मी से छुपकर बाहर जाना, खेलना, पकौड़े खाना, गर्म चाय पीना, गपशप करना घर वालों के साथ बैठ के, और मस्ती करना, कीचड़ में भीग जाना, वो एक काफी मजेदार और रोमांचक सफर था। पर समय के साथ चीजें बदलती जाती है, जैसे बड़ी हुई या हम लोग बड़े होते हैं तो उसी बारिश की आवाज में, शांति में हम लोग सुकून ढूंढते हैं। तो मैंने सुकून ढूंढा उसमें। समय बदलता रहता है, फीलिंग्स बदलती रहती है, इमोशंस बदलते रहते हैं, पर बारिश वही है। और आज भी ये सफर उतना ही रोमांचक है, बारिश को देखने का, बारिश को एंजॉय करने का, उसे फील करने का।
5: अच्छा श्रेया, आपकी यादें तो सुन के लगता है कि आपको बारिश बहुत पसंद है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको बारिश तो पसंद है लेकिन बारिश में भीगना पसंद है?
6: बारिश में भीगना, मुझे इतनी ज्यादा मार पड़ी है, मम्मी की प्यारी प्यारी डांट और मार मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि घर वालों को हमेशा रहता था कि बच्चा भीग जाएगा, उसे जुखाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम सर्दी जुखाम को इनवाइट करता ही है, वायरल वगैरह को। पर उसको छोड़कर बेफिक्र होकर बारिश में भीगना, मम्मी से छुप छुपा कर दोस्तों के साथ बाहर जाके बारिश का मजा लेना, वो एक अलग लेवल का इमोशन था जो मैं आज भी फील करती हूँ। और बचपन में ही नहीं,

0: बारिश में भीगना तो मुझे इतना पसंद है, मैं आज भी उसको करती हूँ। अगर बारिश होती है तो गेट के बाहर, छत पर, वरांडे में उसको देखकर भीगना मुझे बहुत पसंद है।
1: जैसा कि आपने बताया कि आपको आज भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है, आप तो कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो कॉलेज से जुड़ा हुआ तो आपकी जरूर कुछ ऐसी घटना होगी जो आप बारिश में भीग के और सबसे झूठ बोल के गई होंगी।
0: जी बिल्कुल, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती तो चलता ही है, प्लस दोस्तों के साथ बाहर रहना तो और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे लिए दोस्तों के साथ जाना, जैसे बारिश हुई तो एक दो क्लास बंक करके बाहर आना, टीचरों से बचते बचाते हुए बाहर आना, और फिर बाहर आकर बारिश में भीगना। और हमारे कॉलेज के बाहर ही दादा हैं, वो स्टॉल लगाते हैं चाय का, और वड़ा पाव और बन मस्का वगैरह खाते हुए बारिश को एंजॉय करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते रहना और इस तरह से भीगना, और फिर हॉस्टल आकर एक दूसरे का ध्यान रखना, क्योंकि छींक वायरल जैसे मैंने बोला ये होता ही रहता है। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को काढ़ा बनाकर देना, ये भी कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा याद रखने वाले हैं। मेरी कई दोस्त हैं हॉस्टल में, वो बहुत अच्छे से एकदम मम्मी जैसा ध्यान रखती हैं अभी भी, तो वो कभी फील नहीं होने देती हैं, लोग बदले टाइम बदला, मम्मी नहीं है बट वो फील है वैसा ही। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल गए हैं तो हर मौसम सुहाना ही लगता है, बारिश मुझे लगता है।
1: बिल्कुल सही बात है श्रेया। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि आपकी तो इतनी सारी यादें हैं, तो जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो उन सब में से सबसे पुरानी याद ऐसी कौन सी है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है और वो ताजा हो जाती है?
0: जैसे ही मैं बारिश की बूंदें सुनती हूँ या तो मैं तुरंत बाहर आती हूँ, क्योंकि मुझे बारिश देखना भी बहुत पसंद है, तो बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं। तो सबसे बचपन की जो मुझे याद आती है वो ये है कि जब स्कूल ओवर हो जाता था और बारिश हो रही होती थी तो मैं बाहर खड़ी होती थी स्कूल गेट के बाहर, छत के नीचे थोड़ा सा, ताकि मैं भीगू ना, भीगने से बचने के लिए, या फिर क्योंकि घर पे मुझे पता था कि डांट बहुत पड़ने वाली है अगर मैं भीग कर गई, तो भीगने से बचना पड़ता था उस टाइम पे थोड़ा बहुत, तो बच रही थी। तब पापा आते थे छाता लेकर, खुद भीगते रहते थे और मुझे छाते के अंदर कवर करके रेनकोट बना बना के पूरा लेकर जाते थे, और मैं उनको देखती रहती थी, खुद घर पहुंच कर छींक रहे होते थे पर मुझे पूरा प्रोटेक्ट करके लेके जाते थे। और फिर घर पहुंचते ही मम्मी ने जो गरम गरम पकौड़े तले हुए होते थे, भजिया तली होती थी, चाय, और मेरी दादी वहीं बैठ कर बाल मेरे टॉवल से सुखा रही होती थी, तो वो एक अलग लेवल का माहौल घर में बन जाता है। वो माहौल अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली अलग है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम लोग अलग है, तो माहौल हम लोग मिस करते हैं। बट कोशिश ऐसी रहती है कि कोई बात नहीं, मम्मी नहीं है तो क्या, वो बारिश हो रही है, हम ही भजिया तल लेते हैं, हम ही चाय पी लेते हैं, तो वो सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू है।
1: बिल्कुल, आपकी
0: जी
1: तो बहुत अच्छी यादें हैं और श्रेया आपकी यादें तो सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: जी
1: अच्छा
0: शुक्रिया।
1: श्रेया, आपकी कुछ ऐसे फरमाइशी गीत जो आप सुनना चाहती हो हमसे?
0: ऐसा फरमाइशी गी तो मैं अगर तुम साथ हो अरिजीत सिंह सुनना चाहती हूँ, तो अगर
1: अच्छा
0: आपको बजा दे तो बहुत आभार होगा।
1: जी, ठीक है।

0: हेलो, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम वंशिका है।
0: अच्छा वंशिका, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सिग्रा से,
0: अच्छा, आप क्या करती हैं अभी वंशिका?
1: मैं बीएससी कर रही हूँ यूपी कॉलेज से।
0: अच्छा, तो वंशिका, जैसा कि आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, तो क्या आपको बारिश में भीगना पसंद है?
1: जी
0: तो वंशिका, जैसा कि आपने बताया कि आपको बारिश में भीगना बहुत पसंद है, तो आपकी सबसे यादगार बारिश कौन सी रही है?
1: मेरी सबसे यादगार बारिश रही थी कि एक बार हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे हमारे पूरे परिवार समेत, और हम लोग फिर घूम के वापस आए। बहुत अच्छी जगह थी वो, बहुत बारिश का सबसे ज्यादा लुत्फ हम लोग लग रहा है वहीं पे उठाए होंगे। मगर फिर वापस आते समय हमारी गाड़ी रुक गई क्योंकि बारिश का पानी घुटनों तक भर गया था। उस समय बहुत दिक्कत हुई थी। हमारे आस पड़ोसों ने बहुत मदद की उस समय हमारी गाड़ी को बाहर निकालने में।
0: अच्छा, तो वंशिका, आपने तो ये बहुत ही खतरनाक अपनी याद बता दी। और वंशिका, आप बताना चाहेंगे कि बारिश में आपका सबसे पसंदीदा काम आपका क्या है?
1: मुझे चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद है। जैसे ही बारिश आती है हम लोग तुरंत किचन में भागते हैं, पूरे परिवार के लिए चाय पकौड़े बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम

0: में बैठ करके हमारा वरांडा खुला हुआ है, तो वहीं पे बारिश का लुफ्त उठाते हैं हम लोग, चाय पकौड़े खाते हैं।
1: ये बारिश के मौसम में ये चाय पकौड़ा खाना और बरांडे में बैठ के, ये तो सबको ही बहुत पसंद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वंशिका, आपने जैसे कहा कि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपका मजेदार किस्से तो जरूर रहे होंगे कॉलेज से भी जुड़ी हुई।
0: हाँ, कॉलेज से तो बहुत है। जैसे हम लोग कई बार क्लास बंक करके कैंटीन में चले जाते थे समोसे खाने के लिए बारिश के मौसम में, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करते रहते थे कि आज क्लास कैंसिल होगी या नहीं होगी। एक बार हम लोग भीगते हुए असाइनमेंट जमा करने गए थे, तो क्लास में बैठे हुए थे और पंखा चल रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी उस समय। फिर हम लोग वैसे असाइनमेंट जमा करके, हमारी कॉपी किताब भी गीली हो चुकी थी, असाइनमेंट भी थोड़ा बहुत खराब ही हो गया था, मगर पास हो गए।
1: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, और कॉलेज में भीगते भीगते असाइनमेंट जमा करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा वंशिका, आपने कभी ऐसा किया है कि कॉलेज क्लासेस कभी बंक करके आप बारिश में भीगने गई हो?
0: हाँ, कई बार किए हैं। वैसे तो कॉलेज आते समय भी हम लोग भीगते हुए आते थे, मगर फिर क्लास बंक करके फिर हम लोग बाहर जाते थे रोड पे, जो रोड किनारे गड्ढे होते हैं ना, पानी भरे हुए होते हैं उसमें, उसमें हम लोग खूब छलांग मारते थे, खेला करते थे। तो अपने क्लास बंक करके, हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पे झूले लगे हुए हैं और बेंचेस हैं, तो हम लोग बेंच पे जाके बैठते थे, बारिश होती रहती थी तो वहीं पे हम लोग स्लाइड पे जाके झूला करते थे, झूला भी झूलते थे।
1: ये तो बहुत अच्छी यादगार पल रहे हैं कुछ आपके कॉलेज में, और कॉलेज में तो हर कोई ही ये करता है कि अपना क्लास बंक करे और सब लोग जाएं। अच्छा वंशिका, आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये बारिश का मौसम सिर्फ आपके लिए ये एक मौसम है या आपकी कुछ यादों का खूबसूरत सफर भी है?
0: बारिश का मौसम मुझे सबसे अच्छा लगता है, काले बादल मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें तेज चमकती हुई धूप नहीं होती है। फिर बारिश के मौसम आने के बाद गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है, हर जगह एक शीतलहर बहने लगती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा वंशिका, हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपना कुछ फरमाइशी गीत जो आप सुनना चाहती हो?
0: जी, मैं सैयारा सुनना चाहती हूँ।
1: ठीक है तो...

0: तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी यूथ डायरी की तरफ और देखते हैं क्या है हमारे आज के शब्द।
1: आज का हमारा हिंदी का शब्द है अवमानना, जिसका अर्थ है किसी का अनादर करना। और अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करना चाहें तो कह सकते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति की भावनाओं की अवमानना नहीं करना चाहिए।
0: और हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है keen, KEEN, which means very interested, and the sentence formation would be she is keen to learn new skills।
1: दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। लेकिन वैसे तो कहते हैं ना कि हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा हमें ज़रूर अतीत से लेनी चाहिए। आइए अब एक नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज 11 जुलाई को महत्वपूर्ण घटनाओं पर।
0: तो दोस्तों वर्ष 1902 में सरदार बलदेव सिंह, जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री थे, उनका जन्म हुआ था।
1: और इसी के साथ दोस्तों आज ही के दिन 1922 में हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई और 2003 में लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली में सदाई सरहद बस का परिचालन हुआ।
0: वर्ष 2007 में चर्चित चित्रकार MF हुसैन ने न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो मेरे दोस्तों ये तो रही हमारे आज के दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ खास खास बातें। वैसे दोस्तों हमारी आज की रोजगार सूचना की तरफ अगर रुख करें ना, तो हमारी रोजगार सूचना उन युवाओं के लिए है, या यूं कहूं कि ये खुशखबरी उनके लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो मेरे हार्ड वर्किंग चैम्स, आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO और मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है।
1: और हाँ, इस भर्ती के लिए तहत कुल 6175 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है दोस्तों, और इसकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित है। और अगर इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो मेरे दोस्तों अब इसी के साथ विजिट करने की जहां बात आती है, तो हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं और आपको अपना प्रश्न बताते हैं रोज। लेकिन हम पहले एक नजर अपने कल के सवाल और उसके सही जवाब को तो बताते चले, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारा सही जवाब क्या था कल का।
1: तो हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था कि किस राज्य सरकार ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI शुरू की है, जिसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश।
0: और जो हमारे विनर्स बने हैं, आप उनकी लिस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं। हम आपको अपना आज का प्रश्न बताते चलें। हमारा आज का प्रश्न आपसे ये है कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। तो फटाफट से आप अपने आंसर्स हमें DM कीजिए हमारी इंस्टाग्राम हैंडल youth_AIR वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए हमें youth_AIR vnets@gmail.com पर।
1: दोस्तों वैसे तो जब भी स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो हमारा ध्यान सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा मन ही स्वस्थ ना हो, तो हम अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
0: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि विचारों का संतुलन और तनाव का सामना करना है।
1: आज के युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं, पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाएं, सोशल मीडिया का प्रभाव और भविष्य की चिंता।
0: लेकिन समस्या तब होती है जब लोग इसे नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए खुद को खुश और शांत रखना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यक है। इसी संदेश के साथ
0: आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले हर रोज की तरह आपकी दोस्त सैयबा आपसे यही गुजारिश करेगी मेरे साथियों की ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का। बाकी समय का ख्याल रखते हुए दीजिए तैयबा और

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम गोरखपुर केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ ही हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के रामकोला विकासखंड के टिकवा टार में 525 करोड़ रुपया की लागत वाला 464 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ये मौका पर कई गो सरकारी योजना के लाभार्थियों के चेक और प्रमाण पत्र बटले के बाद मुख्यमंत्री कहले कि डबल इंजन के सरकार के अले के बाद कुशीनगर जिला की तस्वीर बदल गयी हो। प्रदेश सरकार की उपलब्धि के नावत मुख्यमंत्री कहले कि पिछला 9 बरिस में प्रदेश में न तो कौन उपद्रव हुई और न दंगा।
2: ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
1: मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के पिपराइत विधानसभा क्षेत्र के भटहट बांस स्थान में 4 लेन सड़क के सतह 5 गो सड़क का लोकार्पण और सड़क निर्माण अब पर्यटन विकास से जुड़ल 19 गो विकास कार्य का शिलान्यास कैले। इससे पहले आज दिन में मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दर्शन करके करीब 250 लोगों की समस्या के सुनले और समाधान का भरोसा दियाले। पर्यावरण संरक्षण बदे प्रदेश सरकार बिहाने पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करी। एक शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के लगे पौधा लगा के करी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी ने और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाई है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राज्य सरकार 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रख ले हवे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में प्रदेश भर से आज से दस्तक अभियान का शुरुआत भयल। ये अभियान 31 जुलाई ले चली। इनमें स्वास्थ्य विभाग का टीम घरे घरे जाके लोगों के मौसम बीमारियों के सतही और ये बीमारियों का लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करी है। जौनपुर में आज अभियान में लोगों के संचारी रोग नियंत्रण बदे जागरूक कई के दवाई का छिड़काव कई गयी। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी का निष्पक्ष जांच का मांग वाला कई गो याचिका पर सोमवार के सुनवाई करी। ये याचिका का सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन के पीठ के सामने प्रस्तावित हवे। ये याचिका में घटना के सीबीआई जांच, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से करावे का अनुरोध कई।

0: सुझाव। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का प्रोविजनल उत्तर कुंजी के लेके आपत्ति दर्ज करने का तारीख उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय कर हवे। अभ्यर्थी 14 जुलाई ले ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेले। सावन महीना में होखे वाला कांवड़ यात्रा का तैयारी जिला प्रशासन अब महीने से शुरू कर दिया लावे। बनारस में सुरक्षित अव्यवस्थित कांवड़ यात्रा पूरा करावे बदे पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तय राहिन का निरीक्षण कर लिए। ये दौरान वहाँ के श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ल बिंदुओं का समीक्षा कर ली। दोनों अधिकारी निर्देशित कर लें कि यात्रा के दौरान कौनों श्रद्धालु के कौनों असुविधा न हो ये सुनिश्चित कर जाओ। प्रदेश के कई जिला में पिछला दो दिन से रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा के नाते तापमान में गिरावट दर्ज कर गई हो और लोगों के उमस भरल गर्मी से राहत मिलल हो। मौसम विभाग के हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अगला 3-4 दिन ले गरज चमक के साथ रुक रुक के बरखा हुई और प्रदेश के कई जिला में भारी बरखा से हो रहा जनहानि और पशुहानि के घटना का संज्ञान ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटा में मुआवजा देवे का निर्देश दिया गया है। मानसूनी बरखा के नाते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़े लागल हो। लखीमपुर खीरी के पलिया कला में शारदा नदी खतरा के चिन्ह के लगे पहुंच गए हो। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा लाओ। एक देखा जिला प्रशासन सतर्क हो और सुरक्षा का जो उपाय कर लिया गए हो। समाचार पूरा भाई नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए कार्यक्रम विवरण में जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में। पहले आज के शेष कार्यक्रम रात्रि 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह रात्रि 8 बजे। शाम 7:33 सुनेगा स्वर बेला कार्यक्रम में काव्य पाठ करेंगी सीमा सिंह। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर फूल गोभी की खेती विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश कुमार राय से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत आप सुन सकेगा। साथ ही साथ किसान में सुनेंगे मोहम्मद इस्लाम का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:45 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 10 बजे सुनेगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 9:30 पर जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर सुनेगा सितार वादन। कलाकार होंगे आनंद कुमार मिश्र। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर दूषित जल से होने वाले बीमारियां और इनका इलाज विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। श्री रामचरितमानस संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस सुनेगा कल सुबह 7 बजे। मधुरिमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे ज्ञानधारी कुमार और इनके गाये लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर किसी गत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे।

0: साथ ही साथ कृषि कार्यक्रम में ज्वार की खेती विषय पर डॉक्टर जोखन सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत भी आप सुन सकेंगे। बाल संघ कार्यक्रम सुनेगा कल दिन 11:30 पर सुनेगा स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय होगा एलर्जी और इसका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दिव्यांग पाठक। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे तलत अजीज और पिनाज मसानी। हेलो फोन फरमाइश लेकर आएंगे अरुण कुमार पांडे कल दिन 12 बजे। आज इतवार है, इस कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर सुनेगा झलकी एक खबर झूठी। लेखक श्याम मोहन और प्रस्तुतकर्ता होंगे पांडुरंग पुराणिक। कल दिन 2:30 बजे सुनेगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम। कल दिन 1:30 पर सुनेगा फरमाशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कल शाम 5 बजे सुनिएगा ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल, जिसमें बच्चे सुनेंगे बाल गीत और हमारे वन्य जीवों का महत्व विषय पर सन्नी यादव की वार्ता। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम के आरंभ में इसने लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है मिली। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतकार एस टी परमन।

अब आइए सुने केजे यशुदास की आवाज में अमित खन्ना के लिखा गीत। संगीतकार हैं राजेश रोशन और फिल्म का नाम स्वामी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी वाराणसी है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धाः सामरिक सहभागिता स्तरे समेधिताः। 30,000 यावत् पारस्परिक व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकाणां लक्ष्यं निर्धारितम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कथनम्, न्यूजीलैंड देशे निवसता भारतीय समुदायेन द्वयोः राष्ट्रयोः विकास यात्रायाम् एकः महत्वपूर्णो भागः ऊढः। ऑकलैंड नगरे विशालं भारतीय प्रवासी समुदायं च संबोधितवान् असौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तंत्रेण निर्मितस्य INS महेन्द्रगिरि युद्धपोतस्य विधिवत् जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहनक्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमान यात्राः निरस्तीकृताः, शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह 30,000 यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां

0: प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैण्ड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैण्ड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभयदेशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैण्ड देशस्य क्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लैक्सन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत

0: जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
1: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिकरूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षाक्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीम् आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीनतन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रिय संकल्पेन वीर सैनिकैः सक्षम सैन्य शक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिक सैन्य बलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतं आत्मनिर्भर भारत संकल्पस्य अन्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधातुं कटिबद्धं वर्तते। श्रीराजनाथसिंहः अद्य विशाखापत्तनम नगरे स्वदेशीयायाः प्रोजेक्ट 17A प्रणाल्याः षष्ठस्य INS महेन्द्रगिरि नामकस्य स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोतस्य नौसेनायाः पूर्वीय पोतदले सम्मेलनं समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन अथ राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य महाराष्ट्रस्य नागपुरे तृतीय ब्रिक्स परिवहन मन्त्रिणां परिषदः अध्यक्षतां विहितवान्। सम्मेलनस्यास्य समाप्त्यन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणः असौ अब्रवीत् यत् बहुभ्यः देशेभ्यः समागतैः प्रतिनिधिभिः वैकल्पिक जैव इन्धनानाम् अथ प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगेन भूमार्ग, रेलमार्ग, विमानयान, जलमार्गेषु च कार्बन तटस्थ परिवहनं विकासयितुं कृतानां प्रयासानां विस्तरेण समीक्षा कृता। असौ प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये संकट प्रतिरोधकाय, सुस्थिराय च परिवहन क्षेत्राय परस्पर सहयोगं सुदृढं विधातुं आधुनिक प्रौद्योगिकीनां नूतनान्वेषणानां च आदान प्रदानं क्रियते। अद्य जावी चक्रवातः पूर्ण चीन सागरे प्रचंड वेगेन प्रवर्धमानः सन् जापानस्य दक्षिणेषु द्वीपेषु तीव्र वायुना सह अतिवृष्टिम् अजनयत्। अनेन सहैव तैवान देशः पूर्वीय चीन देशश्च चक्रवातस्य तट संघटनाय पूर्णतः सज्जो वर्तेते। ऋतु विभागस्य पूर्वानुमानानुगुणम् एषः चक्रवातः तैवान देशस्य उत्तर भागात्

0: प्रातः एव चीनदेशस्य झेन्जियांग प्रान्ते तटं प्रवेक्ष्यति। जापानदेशस्य ओकिनावा प्रान्ते समुद्रतरंगाणां समाह्वानानन्तरं 200-तोप्यधिकाः विमानयानानि निरस्तीकृतानि। अद्य भारत इंग्लैंड क्रिकेट दलयोर्मध्ये प्रचलन्त्याः श्रृंखलायाः पञ्चमान्तिमश्च T20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा साउथैम्पटन नगरस्य यूटिलिटा बाउल क्रीडांगणे भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: राम गुंजा बहिन,
0: राम। हाँ सुमारू भैया
1: अरे खेती किसानी में का होते समय?
0: भाई, खेती किसानी में तो देखले हुआ अपन धान का रोपाई हो तो देखा हो, एक एक घड़ी मौसम भी तनी मजे का हो तो वही में काम हो चलल
1: बहुत
0: तो।
1: बढ़िया बतौलू है। देखा तू तो भाई चतुर किसान हो, पहले बिया डाल दे लो तो रोपाई होता। अभी बहुत किसान भाई जैसे हमारे बिन खाए खेती अभी बिया तैयार ना बा, लेकिन खेत जोतात है और जौन सनई ढैंचा लगल लाल वही में पलटातो हुआ थोड़ा थोड़ा बढ़ गल ना। लेकिन एक बात यो बताई कि जे बिरवारी लगावे को शौकीन बा है तो अपने घरे छानी पर आए थोड़ा थोड़ा मट्टी रख करके नेनुआ है, करेला है, लौकी, कोहड़ा, सेम लगाओ थो लोग लगा दिए भैया तो 4 महीना बाद इनके फल मिली।
0: हाँ भाई
1: हरेक
0: सही बात
1: तरकारी
0: हो।
1: अदा ये जानते हो गुंजा बहन, तरकारी नकदी फसल है।
0: हाँ
1: आई मान दो ना
0: एकदम।
1: कि बिना तरकारी के ना टूअर लगेला जैसे दाल भात
0: हाँ भाई, खनवे अच्छा ना
1: का।
0: लगेला, तरकारी तो जरूरे चाहिए। अब भाई ये घड़ी जो किसान भैया लोगन लगावत हुआ तो भाई देखा, 2-4 महीना बाद अपन फल हो जाए तो के अपन बेचिए भी, जे हो सके तो बेचिए, ना ही
1: हाँ
0: तो भाई घर का काम तो चलबे करी।
1: चलवे करी
0: अब बाकी सुमारू भैया,
1: भैया
0: ये
1: बहन।
0: देखा तो हुआ कि ये जो मौसम हो ना, कभो कभो ऐसा गड़बड़ा जाता हो ना कि दाऊ जैसे लगा तो क्या बरसबे ना करिए, खाली छा गए हुआ, इतना उमस कि माथा खराब हो
1: नहीं नहीं ई
0: जाता।
1: दवा सही करो, उमस तो ऐसा है कि लगी कि अब बर बरस दी है, लेकिन बरसत ना हुआ आ हमन ताकत है आसमान की तरफ के दऊ बरस दें। हैं 2-4 दिन बरस दें तो ताल तलैया थोड़ा भर जाए, पानी का सतह नीचे जो पहुंच गया था ऊपर आ जाए, है कि नहीं?
0: लेकिन जाना था हुआ ई कौने कमी से हो था, ई हमारी लोग का कमी हो सुमारू भैया। हम लोग ने के जन अपने हाथ से खिलवाड़ कर रहल है पर्यावरण के प्रति, माने कि जवन हम लोगन के मिलल हो पर्यावरण से, अपने प्रकृति से, ओकर हम लोगन उपयोग तो कर रहल है, लेकिन संगे संगे कुछ जनी ऐसे हुए ना, इतना दुरुपयोग हो रहल हो कि देख के मन खराब हो जाला।
1: एकदम सही कहलो गुंजा बहन, मन तो दुखी हो जाला। कहल गल कि प्रकृति के बचावा, तब प्रकृति हमन के बचाई। आज जंगल जन कटल जात है, विज्ञानी लोग कहना कि बढ़िया बारिश तब हुई, अपन पर्यावरण तब सुरक्षित हुई जब 1/3 जंगल रही। यही बदे हमन कहल जाए कि भाई समय है, मौका है, दस्तूर है, जे किसान भाई लोग गड्ढा लगोलो खोलो ओहू में पेड़ लगा दें, अभी मौका है।
0: हाँ भाई।
1: लेकिन लेकिन कुछ लोग ये सोचा ना कि यार हमारे पास मनाई ना बाटा है, तो कैसे लगे? आ कुछ लोग घरे घरे मनाई तो खूब बाटा।
0: हाँ भाई, इतना मनाई बढ़त जात हुए कि पर्यावरण प्रदूषित हो जात हो, और जानत हुआ एकर असर सीधे सीधे हम लोगन पे पड़त हो। अब देखा ना, जब जब जनसंख्या बढ़त हो तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो घटत हो, सबके पूरा पड़ते ना हो। अब देखा ना, चाहे सब्जी तरकारी का बात लेला, चाहे अनाज का बात लेला, जितना हम लोगन किसान भैया लोग मेहनत करके उगावत हुन का उतना पूरा पड़त हो
1: नहीं
0: ना,
1: नहीं
0: ना
1: नहीं
0: तो काहे ना हो, तो काहे से कि जनसंख्या बढ़ल जाता हो। आ ई जनसंख्या का जो बात कर रहे थे।

0: हम लोगन ना देखा आज कवन दिन हो, आज है 11 जुलाई,
1: विश्व
0: मने कि
1: जनसंख्या
0: हाँ
1: दिवस।
0: आज हो विश्व जनसंख्या दिवस। ई विश्व जनसंख्या दिवस काहे मनावल जाला, यही के देखत भैल कि जनसंख्या इतना बढ़त जातो, इतना बढ़त जातो कि संसाधन सब घटत जाता हो, तो संसाधन ना घटे, सबके पूरा पड़े कुल चीज, मने कि भोजन हो, अनाज हो,
1: आवास,
0: कपड़ा हाँ लत्ता हो, आवास हो, जमीन हो, कुल सबके पूरा पड़े। एक खातिर अभी से सचेतल जात हो कि भाई जनसंख्या वृद्धि के रोका, जनसंख्या पे तनी नियंत्रण करा।
1: सही बात है। देखा समझदार लोग हो तो वो देखे ना भाई हम दो हमारे दो
0: हाँ
1: हैं, अब तो ये आगे लगे भाई कि और कम हो, था कि नहीं। तो जनसंख्या का मतलब कि सक्रिय जनसंख्या रहे, एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे, हैं विकास में अपने सहभागी बने। आज जो बतलो कि जब जनसंख्या विस्फोट वाला बात होला
0: हाँ
1: तो वही संसाधन घट जाई, हाँ तो वही पर प्रकृति पर वजन पड़ी।
0: हाँ
1: तो जनसंख्या के बचाव बदे जरूरी है कि हमन ये सोचल जाए कि भाई अपन संसाधन कैसे बची, हाँ संसाधन बदे क्या कर लिए कि जनसंख्या के नियंत्रित रखा जाए, तब जाके तरक्की हुई। अगर ये तो बात हो गल, आप पंच लोग के कहा सुनवाओ कि हाँ
0: देखा भाई आगे बढ़े से पहले पंच लोगन के जो जरूरी संदेश हो के भी तो सुनवावे के। हाँ
1: सुनवा दा।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गुंजा बहिन,
2: हाँ
1: भैया, सुनवा देलू है। अब जो हम बात कर दिल जाए तरकारी का, कि तरकारी एक नगदी फसल है।
2: हाँ।
1: और उसे पैसा अच्छा आमदनी होला, कहे से भाई अपनी गृहस्थी में 2 पैसा आ जाई। तरह तरह खर्चा है, किसानी है, पढ़ाई बच्चन के है, खेती है, बारी है, हिताई ननताई बीमारी वही में। तो नगदी फसल के रूप में फूल गोभी की खेती भी बहुत मुनाफा होला। तो आज ही विषय पर हम जब बातचीत करवा देते कि फूल गोभी की खेती, डॉक्टर राजेश कुमार राय भैया से दिनेश कुमार सिंह भैया के बातचीत भयल सब लोग सुने।
3: डॉक्टर राजेश कुमार राय, आप प्रवक्ता होंगे राजकीय इंटर कॉलेज जखनी वाराणसी में। आज हम आपसे फूल गोभी की खेती के संबंध में जानना चाहब, तो कौन तरह से किसान भाई एक खेती करें कि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
4: सर्वप्रथम इस आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी लोग इस ऋतु में फूलगोभी की खेती बहुत बेहद पैमाने पर करते हैं, क्योंकि फूलगोभी की खेती से अत्यधिक लाभ आपको हो रहा है। फूलगोभी का सेवन करने वाले भी बहुत चाव से खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन B1, लवण तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां तक सेवन की बात है, तो आप लोग सब्जी के रूप में, कोफ्ता के रूप में, पकौड़े के रूप में इसको खाते हैं। जब प्रत्येक रूप में खाया जाता है, निश्चित बाजार मांग रहती है, लाभ होता है
3: जी।
4: तो सर्वप्रथम फूलगोभी की खेती करने से पहले मृदा का चुनाव करना चाहिए, किस खेत में फूलगोभी खेती अच्छी होगी। तो फूलगोभी की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मृदा का चुनाव करें, जिसका पीएच मान 7 के करीब अर्थात उदासीन रहे, जल निकास युक्त तथा कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होना चाहिए।
3: अच्छा।
4: साथ ही मृदा ऐसी हो कि जहां पर जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूलगोभी जल भराव की स्थिति में तुरंत गल जाती है और नुकसान होता है
3: जी। और जो उन खेत बाव में गोबर और कंपोस्ट खाद जरूर हो चाहिए
4: जी, कंपोस्ट खाद जरूर होना चाहिए।
3: प्रजाति के बारे में बताऊं थोड़ा।
4: अब बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रजातियों के बारे में। तो किसान भाइयों, इस समय तो फूल गोभी की अगेती प्रजातियां तो आप लोग लगा चुके होंगे, खेत में तैयार हो रहे होंगे, लेकिन आगे जो मध्य समय की उपक्षेत्री प्रजाति लगाना है, उसके लिए हम आपको बता दें कि प्रजाति का चुनाव करते समय बाजार की मांग, भूमि की दशा तथा बुआई समय को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। फूल गोभी की

0: जो मध्य समय की प्रजातियां हैं उसमें पंत शुभ्रा, पंजाब जायंट, हिसार 114, पूसा हाइब्रिड 2, इम्प्रूव्ड जापानी, पटना मध्य प्रमुख है। इसमें से किसी भी प्रजाति का चुनाव करके आप इस समय नर्सरी आप डाल दीजिए। पछेती प्रजातियां में जिनका आप चुनाव करेंगे उसमें स्नोबाल 16, पूसा स्नोबाल, पूसा स्नोबाल 2, दानिया, पूसा सिंथेटिक, बनारसी मागी इत्यादि का आप चुनाव कर लेंगे। बाजार में कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी अच्छी अच्छी प्रजातियां आई हैं, जिसमें जीएस 85, माधुरी, दामनी प्रमुख है। यदि ऐसी प्रजातियों का किसान भाई आप चुनाव करेंगे तो प्रति हेक्टेयर 200 से लेकर 250 कुंटल तक आप उपज पाएंगे।
1: जी जी। अच्छा, पहले बात आवत है रोपाई नर्सरी के, तो नर्सरी अगर तैयार करे बाटे तो कौन तरह से तैयार करें?
0: हाँ, तो अब किसान भाई यदि प्रजाति आप चुनाव कर लिए अर्थात बीज ले लिए हैं तो नर्सरी डालने का सर्वोत्तम समय अब चल रहा है। सर्वोत्तम मीन से है कि मध्य समय की प्रजातियों का है। पिछेती के जैसा मैंने बताया बाद में है, तो नर्सरी आप ऊंचे स्थान पर डालेंगे तथा नर्सरी डालने के लगभग 22 से 28 दिन बाद इसके पौधे की आप रोपाई कर दीजिए। जब भी नर्सरी डालते हैं हम आपको सलाह यही देंगे कि नर्सरी एक साथ नहीं डालिए, क्योंकि आपका फसल एक साथ तैयार होगा तो बाजार में बेचने में कठिनाई होगी। थोड़ी थोड़ी नर्सरी 10 दिन के अंतराल पर डालते रहें, जिससे आपको निरंतर बाजार में भेजने के लिए फूलगोभी का फूल तैयार मिले।
1: जी जी।
0: अब बात आती है बीज दर की, कितनी नर्सरी डालें। तो किसान भाइयों, एक हेक्टेयर क्षेत्र, जो गांव की भाषा में कहा जाता है 4 बीघे खेत में यदि रोपाई करना है तो आपको 350 से लेकर 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। यह बीज आप 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में डाल देंगे तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए स्वस्थ पौधे तैयार हो जाएंगे। यदि कोई किसान भाई घर पे किचन गार्डन में फूलगोभी खेती करना चाहता है, मात्र 10 वर्ग मीटर क्षेत्र है, तो उसके लिए 1 ग्राम ही बीज पर्याप्त होगा। अच्छा। बहुत ही थोड़ा सा बीज 1 ग्राम बाजार से ले लीजिए, उतने की नर्सरी डाल दीजिए, 10 वर्ग मीटर में फूलगोभी का पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाए।
1: तो बीज शोधन वगैरह करना पड़ेगा?
0: जी, अब बीज ले लिए हैं, बाजार से ही बीज लेते हैं, तो किसान भाइयों ये कहावत है उपचार से बचाव बेहतर होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बीज से आती है। जैसे फूलगोभी में एक बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, पद गलन रोग हिंदी में कहते हैं। पता चला आप नर्सरी देखते हैं पौधा स्वस्थ है, दूसरे दिन जाते हैं तो जमीन के सतह से गल के गिर जाता है। तो इस बीमारी क्या होता है, ये भूमि और बीज जनित होता है। तो बीज शोधन कर देने से इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता। बीज शोधन के लिए जो विधि वैज्ञानिक लोग कहते हैं वह है FIR, पहले फफूदनाशी, फिर कीटनाशी, फिर जीवाणु कल्चर से। तो यहाँ पर फूलगोभी में जीवाणु कल्चर तो ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, केवल फफूदनाशी करते हैं। तो कैप्टान या थीरम नामक दवा बाजार मिलती है, 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा। यदि यह दवा न मिले ऐसी स्थिति में कार्बेंडाजिम नामक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करें। तो जहां तक 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में आपको 1 किलोग्राम बीज नहीं लगता, मात्र 350 से 400 ग्राम है। ऐसी स्थिति में 1.5 से 2 ग्राम दवा ही पर्याप्त हो जाता है बीज शोधन के लिए।
1: जी जी।
0: किसी घड़े में या डब्बे में बीज को डाल लीजिए, थोड़ा सा जल डाल करके दवा उस पर डाल के इस प्रकार मिला दीजिए कि बीज के ऊपर परत दवा की चढ़ जाए।
1: जी जी। ट्राइकोडर्मा भी प्रयोग कर सकते हैं?
0: ट्राइकोडर्मा यदि प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, यहाँ थोड़ा सा जब ज्यादा आप जान जाते हैं सुन लेते हैं तो कभी फफूंदनाशी से भी करते हैं और ट्राइकोडर्मा से करते हैं। तो एक दूसरे से एक साथ कभी भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ट्राइकोडर्मा एक सर फफूद है, इस फफूद को अगर फफूंदनाशी के साथ मिला देंगे तो स्वयं मर जाता है। यह फफूद लाभदायक दूसरे हानिकारक फफूद को खा जाता है या मार देता है। तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से पर्याप्त होता है। यह मात्रा निर्भर करता है कितना उसमें स्पोर है माइसीलियम फफूद के है। तो 5 से लेकर 10 ग्राम जो भी आपके पास ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: जी। तो नर्सरी जोन 20-22 दिन में जैसे आप बताते हैं
0: जी
1: तैयार हो जाइए।
0: तो नर्सरी जी 20-22 दिन तैयार होता है, डालते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: कि जब नर्सरी आप डाल रहे हैं इस समय कभी कभी बारिश हो जाती है।

0: तो नर्सरी की जो क्यारी बनाएंगे, क्यारी जो सर्वोत्तम आकार होता, साइज होता है, वह 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा सर्वोत्तम होता। लंबाई समतल भूमि है तो बढ़ा भी सकते हैं, और 15 सेंटीमीटर ऊंचा जरूर बनाना चाहिए, और दो क्यारियों के बीच में नाली 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छी प्रकार गुड़ाई करके समतल करके क्यारी में, उसमें कम से कम 3 से 5 किलोग्राम सड़ी कंपोस्ट खाद मिला दीजिए और 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। यदि ट्राइकोडर्मा, पुनः बता रहा हूं, मिला रहे हैं तब कार्बेंडाजिम नहीं मिला रहे हैं, या ट्राइकोडर्मा नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में कार्बेंडाजिम की 10 ग्राम मात्रा प्रति क्यारी की दर से मिला दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसमें कोई भी फफूंद जनित बीमारी है तो वो नहीं लगेगी। इसके बाद 5 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी लकड़ी की सहायता से या छोटी खुरपी कुदाली से लाइन बना लीजिए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरा, उसमें एक एक बीज की बुआई कर दीजिए। बीज बोने के बाद आधी सड़ी कंपोस्ट खाद, आधी मिट्टी, अच्छी प्रकार दोनों मिक्स करके भुरभुरा से उसे 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर मोटा ढक दीजिए। ढकने के बाद जूट की बोरी या पुआल से एक पलवार बिछा दीजिए, मल्च कर दीजिए।
1: अच्छा,
0: 3 से 5 दिन में अंकुरण हो जाएगा तो देखते रहिए, और उसके ऊपर हजारे की सहायता से पानी दे दीजिए। 3 से 5 दिन पे अंकुरण जब दिखाई देने लगे तो पलवार को हटा देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हमने एक चीज बताया, कुछ किसान गलती कर जाते हैं कि जूट की बोरी से ढक देना चाहिए। कभी कभी किसान सोचता है कि हमें बताया गया बोरी से ढक देना चाहिए, यदि किसान भाई उसकी जगह पॉलीथीन या प्लास्टिक की बोरी से ढक दिया तो समझिए पूरा बूंद की नर्सरी बेकार हो जाएगी, एक भी अंकुरण नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, या तो पुआल सबसे अच्छा है, घास फूस पुआल से ढके, सूखे हुए घास फूस पुआल, या फिर जूट की बोरी, शुद्ध जूट की बोरी हो तो उससे वो ढक सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तरह से नर्सरी उनको तैयार हो जाए।
0: जी, इस तरह से डालेंगे तो 28 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा।
1: अब बताओ था रोपाई के,
0: जी
1: तो रोपाई के लिए जैसे जो खेत तैयार करी है, खाद उर्वरक कितना प्रयोग करें पड़े?
0: हाँ, अब खाद उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है, तो किसान भाइयों अपने खेत की मृदा जांच करा लीजिए, जैसा वैज्ञानिक संस्तुत करते हैं उसके अनुसार खाद उर्वरक अपने खेत में प्रयोग करिए। यदि मृदा जांच नहीं करा पाए हैं और आपको रोपाई करना है, सामान्य उपजाऊ भूमि है तो प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन सड़ी हुई कम्पोस्ट खाद तथा 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। उसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य रूप से जो होता है 5 से 7 किलोग्राम मालीबेडनम जरूर होना चाहिए। अच्छा। किसान भाइयों, फूल गोभी को मालीबेडनम तत्व ज्यादा पसंद है, यदि उसकी कमी होती है तो हिपटेल बीमारी आती है, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर खेत में लाइए। खेत में किस प्रकार आप डालेंगे इस बात को ध्यान रखिए कि पूरी कंपोस्ट खाद, आधी नाइट्रोजन, शेष फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय अवश्य खेत में मिला दें। कंपोस्ट खाद यदि कुछ दिन और पहले मिला देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन देखा यह जाता है किसान का खेत खाली नहीं रहता, इसलिए मिला नहीं पाते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि अंतिम जुताई के समय इन चीजों को अवश्य मिला दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में खड़ी फसल में देना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा, रोपाई के लिए थोड़ा बताओ कि कितना दूर पर रोपाई करें?
0: जी, अब आपने खाद डाल के खेत तैयार कर लिया अच्छी प्रकार, तो रोपाई की जो दूरी होती है 45 × 50 सेंटीमीटर सबसे बेस्ट होती है। अब यह निर्भर करता है कि प्रजात कैसी, ज्यादा फैलने वाली, बढ़ने वाली है, तो दूरी थोड़ा सा 5 से 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक बढ़ा देते हैं। कम फैलने वाली है तो थोड़ा सा इसको हम कम भी कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर सर्वोत्तम होती है। एक एक पौधे की रोपाई करना चाहिए। कुछ पौधों को बचा करके उसी खेत में एक जगह रख देना चाहिए। यदि कोई पौधा किसी कीट के कारण या किसी अन्य कारण से नष्ट हो जाता है तो उसके जगह उस पौधे को उखाड़ करके लगा देने से खेत में प्रत्येक पौधा उपस्थित रहता है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है।
1: जी जी, तो इधर रोपाई होगी, उसके बाद सिंचाई वगैरह हमें करते रहे?
0: इसके बाद सिंचाई है, तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई जो की जाती है, यदि आप हजारे की सहायता से जड़ों पे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन

0: किसान भाई अगर बड़े पैमाने करते हैं तो हजारेस करना मुश्किल होता है। तो दूसरा विधि होता, आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत उद्यान विभाग कृषि विभाग द्वारा अनुदान भी दिए जा रहे हैं टपक सिंचाई अपनाने के लिए। यदि टपक सिंचाई अपना ले तो फूलगोभी के लिए और भी सर्वोत्तम है। जो हमने खाद की मात्रा बताया उर्वरक की, वो भी मात्रा कम लगेगी। यदि नॉर्मल खेत है आपका, तब मजबूर हो गए कि हमारे पास न टपक है न हजारे दे सकते हैं। तब आप जब रोपाई करेंगे बेड पे, यदि रोपाई करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। बेड का मतलब जिस प्रकार से आपने नर्सरी डाला उसी प्रकार से बेड। अब यहां पर बेड की जो चौड़ाई होगी वह होगी 110 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर की नाली होगी। तो दोनों बेड के दोनों किनारों पर फिर वही 40 से लेकर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधा लगा देंगे। और सिंचाई उन्हीं नालियों में करना चाहिए। नाली में करने से पानी मृदा में अवशोषित होकर के जड़ों के पास पहुंच जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है। पूरे खेत में पानी न पहुंचने से खरपतवार भी बहुत कम उगते हैं।
1: तो यही बताओ जी, पूरा जो 110 सेंटीमीटर जमीन बा तो खाली रहे?
0: नहीं, दोनों किनारे पर सर हो गया ना, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी जो हमारी 50 सेंटीमीटर हुई ना,
1: तो नाली के दोनों तरफ हुए,
0: नाली के दोनों तरफ लगाएंगे। हाँ। मतलब एक बेड के दोनों किनारों पर लगाएंगे, या कहें हम नाली के दोनों किनारों पर लगाएंगे। तो हम पौधा बेड पे लगा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं बेड के दोनों किनारों पर लगाना चाहिए। फिर 30 सेंटीमीटर, अब जहां 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी थी, अब वो घट करके कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर थोड़े पौध संख्या भी बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन देखा यह गया कि समतल भूमि की तुलना में उत्पादन इसमें अधिक मिलता है जी।
1: तो इस तरह से अगर खेती करत बाटे फूल गोभी के, तो उनके पौधा का बढ़वार अच्छी हुई और पैदावार ज्यादा मिली
0: जी। पैदावार भी ज्यादा होगी, रोग कीट भी कम लगते हैं, क्योंकि जड़ के पास पानी नहीं लगता है और जड़ों के भी हवा चाहिए थोड़ा, आधा पानी आधा जल की कहा जाता, पौधों को भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पौधे का विकास अधिक होगा, विकास अधिक होता तो निश्चित है उत्पादन अधिक मिलेगा, फूल की गुणवत्ता अच्छी।
1: आप फूलगोभी खेती के संबंध में जानकारी दें, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
3: सोमारू भैया,
2: हाँ गुंजा भैया,
3: अपन किसान भैया लोगन बत कही सुनत रहे हैं कि फूल गोभी का खेती पे डॉक्टर राजेश कुमार राय से बतियावत रहे हैं। दिनेश कुमार सिंह भैया देखा हो बत कही बड़ा नीक कर रहा कि माने कि पूरा विधि बतावल गए लोग कि का चीज का कैसे माने फूल गोभी का खेती करल जाए और बीज कैसे लेवल जाए और कितना जगह पे कितना बीज का प्रयोग करल जाए
2: और कौन कौन वेरायटी है वो हिसाब से नर्सरी डाले के है।
3: हाँ।
2: और कीटनाशी का कैसे प्रयोग करल जाए, ये हिसाब से बहुत बढ़िया बातचीत रहल। तो डॉक्टर राजेश कुमार राय भैया से बात करता ना, दिनेश कुमार सिंह भैया। अच्छा तो पंच लोग जो होत हुई है।
3: हाँ, जरूर जो है भाई, गीत गौनई के ना जो होला, अपन पंच भैया लोग भी गौनई के जोहत हुई है, तो चला सुन लेवल जाए पंच भैया लोगन के साथ ही गौनई।

0: सुख बहुत है बा किसानी में। ई किसानी गीत गावत के रहल मोहम्मद इस्लाम भैया। सही बात हो गुंजा, किसानी बहुत बढ़िया चीज है। कल कर के उत्तम खेती, खेती के हमेशा उत्तम मानल गया रहा और किसान लोग अन्नदाता हूँ। हाँ। तो कौन होगल अभी बता दा, कल बिहने दिनेश भैया का जानकारी दी।
1: कल बिहने 6:05 पे अपन खेती के बाते में जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह भैया सामयिक कृषि कार्य पे।
0: अगर संजय के पंचायती में क्या बातचीत हुई?
1: असान जी के पंचायती में हुई बत कही ज्वार का खेती और एपे डॉक्टर जोखन सिंह से बतिए हैं दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: और साथ में गौने भी हुई
1: एकदम हुई।
0: अच्छा ये तो कल का बात होगा, लेकिन देखा कुछ बात अपनों में छूट गल है। छूट ही गल है कि देखा अब धीरे धीरे बरसाती मौसम आए गल है। कहीं कहीं बारिश भर बात गड्ढा में पानी भी लग गल भाई। कोई छते पे लोग अपने टायर भी रख लो तो हम पानी भर गल भाई। है बतावा तो क्या करे के चाहिए टायर के?
1: अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, ए समय बड़ा सचेत रहे का समय आ गयल हो। जवन जगह पानी इकट्ठा हो तो मने की जल भराव हो जा तो ओके तो पहले निकास का मार्ग बनावा। ओकरे बाद भाई अपन स्वास्थ्य भी देखे के हो, कहे से कि ऐसने मौसम में ना बड़ी जल्दी मने बीमार पड़ जाता हो। ए लिए भाई ऐसा चीज खा जिससे कि पोषक तत्व तो मिल सके, अपन शरीर स्वस्थ रह सके।
0: साफ सफाई के ध्यान दे। अब बाजार में जो खुला में चीज बिकता चाहे कटल फल है वो सब एकदम न खाए। है कि नहीं?
1: देखा हो सुमारू भैया, अब हम लोगन के भी चले का समय हो गए।
0: तो पंच लोग से आगे मांगल जाए,
1: एकदम मांगल जाए
0: तो पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था। अब ऐसे आकाशवाणी वाराणसी से फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अपनापन से। आवाजें हैं किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी अब फिल्म अपना अपन का गीत सुने थे, आवाजें थी किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की। अब आइए राजेश्वरी सचदेव का गीत गाया गीत सुने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम अंधा कानून।

और अब कार्यक्रम के अंत में ऐसे नहीं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। फिल्म का नाम धरती कहे पुकार की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों संबंधी सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रेखा गौतम निवासी पूरा होल राय थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर पुत्री लालजी गौतम कहीं लापता हो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 16 वर्ष कद 5 फीट इकहरा बदन रंग सांवला और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के सूचना के अनुसार साइन परवीन पुत्री सलीम निवासी रसूलहा थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर कहीं लापता हो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 16 वर्ष कद 5 फीट इकहरा बदन रंग गोरा चेहरा लंबा है। ये सफेद सूट काला लेगी पहने हुई हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदु यादव पुत्री रामलाल यादव निवासी ग्राम गोरखा थाना धीना जनपद चंदौली कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष कद 5 फीट 3 इंच इकहरा बदन रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना धीना जनपद चंदौली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी वाराणसी है। 7:18 हो रहे हैं। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर

0: में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ

0: यज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में 7 व्यक्ति सवार थे जिनमें से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रूपये से अधिक

0: लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वरबेला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आई सुने काव्य पाठ। काव्य पाठ करेंगी सीमा सिंह।
3: नमस्कार। हमारी कविता का शीर्षक है मौन संवाद। वह संवाद जो एक आत्मा का अपनी परमात्मा से होता है बिना शब्दों के। तो आइए जुड़ते हैं कविता से। शब्दों की देहरी जो टूटे भाव स्वयं साकार भी है। अंतर की निशब्द शिला पर मौन सत्य का सार भी है। वाणी सीमित अर्थ अनश्वर कौन किसे समझा पाया। वाणी सीमित अर्थ अनश्वर कौन किसे समझा पाया। स्वीकारे जो अपनी त्रुटियां उस पर कृपा अपार भी है। अधरों से जो व्यक्त हुए ना स्वासों में वही गीत पिरोए। अधरों से जो व्यक्त हुए ना स्वासों में वही गीत पिरोए। स्पंदित उड़के घुंघरू में चेतन रूपी झनकार भी है। मौन को ना विराम जानिए मौन स्वयं विस्तार भी है। मौन को ना विराम जानिए मौन स्वयं विस्तार भी है। बूंद बूंद में सिंधु समाया बिंदु में संसार भी है। मैं का अंतिम स्वर जो डूबा तू का भी अभिमान ढला। मैं का अंतिम स्वर जो डूबा तू का भी अभिमान ढला। अस्तित्वों के मध्य अद्वैत कर्ता अमृत पान भी है। अस्तित्वों के मध्य अद्वैत कर्ता अमृत पान भी है। प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाते बीहड़पत होते आसान। प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाते बीहड़पत होते आसान। गहरे शोर में मौन की अपनी निजता से पहचान भी है। प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाते बीहड़पत होते आसान। गहरे शोर में मौन की अपनी निष्ठा से पहचान भी है। शब्दों की देहरी जो टूटे भाव स्वयं साकार भी है। अंतर की निशब्द शिला पर मौन सत्य का सार भी है। मौन सत्य का सार भी है। हमारी इस अगली कविता का शीर्षक है स्वयं से स्वयं तक। वो यात्रा जो हर व्यक्ति जीवन में भटकते हुए अंत में अपनी केंद्र पर आकर पूर्ण करता है। तो आइए जुड़ते हैं कविता के भावों से। भीड़ बहुत थी साथ सफर में फिर भी मन सुनसान रहा। भीड़ बहुत थी साथ सफर में फिर भी मन सुनसान रहा। जग पढ़ने में जीवन बीता खुद से पर अनजान रहा। खोज रही थी दसों दिशाओं में अपने विस्तार को मैं। खोज रही थी दसों दिशाओं में अपने विस्तार को मैं। अपरिमेय मेरी परिधि की गणनाओं का मान रहा। मूक सभी शब्दों से आगे प्रज्ञा का विस्तार लिए। मूक सभी शब्दों से आगे प्रज्ञा का विस्तार लिए। अहम को मिटती रेखा में अमिट प्रेम वरदान रहा। अहम की मिटती रेखा में अमिट प्रेम वरदान रहा। स्वयं से चलकर स्वयं तलक के सफर में इस अभियान को मेरी। स्वयं से चलकर स्वयं तलक के सफर में इस अभियान को मेरी। अब तक था अजनबी ये अंतस अब मुझको पहचान रहा। भीड़ बहुत थी साथ सफर में फिर भी मन सुनसान।

रहा फिर भी मन सुनसान रहा। आइए अब अगली कविता से जुड़ते हैं जिसका शीर्षक है अस्तित्व। हर उस प्राणी का जो अपने अंतर्मन में झांक के अपने आप को पहचान कर अपने अस्तित्व की तलाश करता है। कौन बताता दीपक को कब तम से लड़ना होता है, कौन बताता दीपक को कब तम से लड़ना होता है, अपने भीतर जलने वाला स्वयं उजाला होता है। पर्वत ऊंचा होकर भी नभ का मान न छीन सके, पर्वत ऊंचा होकर भी नभ का मान न छीन सके, झुककर बहती सरिता का सम्मान तो सिंधु होता है। बीज न पूछे ऋतु की भाषा धैर्य धरा में बोता है, बीज न पूछे ऋतु की भाषा धैर्य धरा में बोता है, गहन प्रतीक्षा के आंगन में प्राण अंकुरित होता है। दर्पण केवल रूप दिखाता अंतस कौन पढ़े मन का, दर्पण केवल रूप दिखाता अंतस कौन पढ़े मन का, स्वयं को जिसने जान लिया आनंद में नयन भिगोता है, स्वयं को जिसने जान लिया आनंद में नयन भिगोता है। जिसने जाना मृत है उत्सव नाच मौज में हो जोगी, घाट किनारे लगा के चौकी मस्त मसान में सोता है। कौन बताता दीपक को कब तम से लड़ना होता है, कब तम से लड़ना होता है। आइए अब अगली कविता से जुड़ते हैं जिसका शीर्षक है इत्मीनान। वो इत्मीनान जो हर इंसान एकांत में अपने साथ जीता है और इत्मीनान का हर एक क्षण का घूट पीता है। हाथों में लेके हाथ हवाओं का गुनगुनाए, गुजरते हुए लम्हों को थाम संग ठहर जाए, है झांकती बदली की ओर से छुपी वो चांदनी, है झांकती बदली की ओर से छुपी वो चांदनी, दीदार को तकती है कि आंखें सुकून पाएं। बचपन से बड़कपन तलक के सफर की कहानियां, बचपन से बड़कपन तलक के सफर की कहानियां, कभी जिंदगी की सुने हम अपनी कभी सुनाएं। नीम के बूढ़े तने से लिपट बच्चों की तरह, नीम के बूढ़े तने से लिपट बच्चे की तरह, पुचकारे दुलारे हंसाएं और मुस्कुराएं। आगे निकल आए बहुत हम जिंदगी की दौड़ में, आगे निकल आए बहुत हम जिंदगी की दौड़ में, दिल कह रहा नादानियों में अपनी लौट आए, दिल कह रहा नादानियों में अपनी लौट आए। चटकती हुई कलियों के लिए गाएं हम बधाइयां, चटकती हुई कलियों के लिए गाएं हम बधाइयां, महकते हुए फूलों के संग हम भी महक जाएं, मुद्दत के बाद भर के सांस इत्मीनान की, मुद्दत के बाद भर के सांस इत्मीनान की, चल दिए रस्ते पे मंजिल को बिन बताए, गंगा किनारे बैठ के चाय की चुस्की लिए, गंगा किनारे बैठ के चाय की चुस्की लिए, फुर्सत के लम्हे आज चलो खुद के संग बिताएं, हाथों में लेके हाथ हवाओं का गुनगुनाएं, हाथों में लेके हाथ हवाओं का गुनगुनाएं। अब अपनी अगली कविता में मैं आपको एक भाव से जोड़ूंगी जो एक अंजूरिया और एक अंधेरिया की कहानी है। अंजूरिया अंधेरिया से संवाद करती है और अंधेरिया अंजूरिया को अपना उत्तर देते कहती है, अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती है, इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ।

कविताओं की श्रृंखला में अपनी अंतिम रचना जो मेरी माँ शारदे को समर्पित है, जिस पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड के स्वर गीत काव्य की जननी है, उसके चरणों में अपनी अंतिम रचना निवेदित करते हुए आप सबसे जोड़ती हूँ अपने गीत के माध्यम से। हे शारदे हमें प्यार दे, हे शारदे हमें प्यार दे,

0: धन्यवाद।
1: अभी आप सीमा सिंह की आवाज में काव्य पाठ सुन रहे थे। कार्यक्रम था स्वर बेला। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें।

0: व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। समय है रसरंग कार्यक्रम का, तो आइए सुने कार्यक्रम का पहला गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम अपना देश। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी परमल।

अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का गीत। गीतकार हैं देवर और संगीतकार अनु मलिक।

औरव कार्यक्रम के अंत में आए सुने फिल्म प्रेम रोग का एक गीत, आवाज सूरज वाडकर और लता मंगेशकर की है, रचना संतोष आनंद की और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत करेलाल का। फिल्म का नाम प्रेम रोग।

फिल्म प्रेम रोके से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह। आज आप सुनेंगे इनके आवाज में कुछ गजलें। सबसे पहले आइए सुने इनके आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह। अब आइए सुने फैज अहमद फैज का ये कलाम। कलाकार एक बार फिर पंडित सीताराम सिंह।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे पंडित सीताराम सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।

अभी अब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुन रहे थे फिल्म मौसम का गीत। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार मदन मोहन। अब आइए लता मंगेशकर और मुकेश को सुने। गीतकार एक बार फिर गुलजार साहब हैं। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म का नाम पूर्णिमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। अब आइए सुने फिल्म प्यासा सावन का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। शब्दकार हैं संतोष आनंद और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

अभी आप फिल्म प्यासा सावन का गीत सुने थे, अब ऐसे नहीं, फिल्म हीरा का एक गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना इंदिवर के, और धुन बनाई है आनंद बख्शी ने।

अब भाई आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल तुमने सुने फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी का एक गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परवरिश का गीत। आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की हैं। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम परवरिश।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में फिल्म परवरिश का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत

0: विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवार

0: को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436789305523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate.

में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं +84362107930, +84915527314 और +84334520414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारत खाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84913089165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वॉक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी रबते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के सबक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाजाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोख के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है।
جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال

शेर के साथ। रात की चादर में जब चांद मुस्कुराता है, गीत बनकर हर एहसास गुनगुनाता है।

अभी आप गुलाम अली की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीत की यही विशेषता है कि ये बिना किसी पर्चे के आपके मन का सबसे निकट का साथी बन जाता है। कभी यह मुस्कान देता है, कभी यादों का एहसास दिलाता है, और कभी जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। सुरों की रोशनी से दिल का हर कोना महक जाए, जो सुन ले प्यार से इसको वहीं मुस्करा जाए। अब आए सुने चित्रा सिंह की आवाज में सईद राही का ये कलाम।

श्रोताओं, गज़ल की नज़ाकत और उसके अल्फाज हमेशा दिल पर अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी धूप, कभी छांव, कभी खुशी, कभी इंतजार, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा जाता है। इसी भावना के साथ सुने ये अगली रचना, आवाज़ तलत अजीज की है।

रात जितनी गहराती है मन उतना ही शांत होता जाता है। ऐसे ही क्षणों में कोई मधुर धुन या कोई अर्थपूर्ण गजल हमारे भीतर एक नई संवेदना जगा देती है। चांदनी भी आज कुछ धीमे कदम से चल रही है, शायद किसी गजल की धुन हवाओं में पल रही है। अब आइए कार्यक्रम के अंत में आशा भोंसले को सुनें।

अब आज का ये कार्यक्रम भी समापन की ओर है। महफिलें यूं ही सजती रहें, सुर यूं ही मुस्कराते रहे, गीतों की यह खुशबू जीवन भर साथ निभाते रहे। इन्हें शुभकामनाओं के साथ अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से

0: रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपू सारद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपू विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command of a laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. रामावरपू माधुरी देवी is accompanied by श्री महादासु येडकोंडलु on the मृदंगम and श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद on the घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विद शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम।

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीतिगौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा, जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: शिनेक्स प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रीतिगौड़ रागम त्रिपुट तालम.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालिया जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्प माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behag Ragam Aditalam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व

0: राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability.